0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: facebook.com/fm247365 fm247365

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.
3: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए पीटीए और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है। और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराहकुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
4: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, सियालकोट से जीती है रोहिरा काशिफ ईवी बाइक। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
5: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें, या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर।

0: इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
1: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: सॉरी सॉरी सॉरी मिराल, मुझको थोड़ी देर हो गई।
1: अरे कोई बात नहीं, मैं भी अभी आई हूँ। हमारे घर धोबी आया हुआ था।
0: अरे हमारे घर भी धोबी आया था थोड़ी देर पहले।
1: ओह, मुझे लगता है हमारे घर एक ही धोबी आता है।
0: मिराल, तुम्हारे धोबी का नाम क्या है?
1: बाबू भाई।
0: अरे हमारे घर भी बाबू भाई आते हैं, सेम सेम।
1: हम जब से धोबी धोबी कर रहे हैं, आपको पता है धोबी कौन होता है?
0: धोबी घर से कपड़े लेके जाता है, उनको धोता है, साफ करता है और इस्त्री करके वापस लाता है।
1: धोबी का गाना सुनेंगे आप?

0: 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: अभी

वेलकम बैक ऑफ हमारे साथ और वक्त हुआ है कि मैं आपको बताऊं आज का टॉपिक क्या है. और आज का टॉपिक ये है कि आर यू अ प्राइवेट पर्सन और क्या कहते हैं प्राइवेट पर्सन है आप या फिर आप एक खुली किताब हैं. और आज के दौर में लोग अपनी हर चीज तो नहीं मगर अपने जिंदगी का हर इवेंट सोशल मीडिया पे डालता है. मतलब आपको घर वालों को भी कह, यार तुमने देखी नहीं मेरी पोस्ट, नहीं देखी, बताया तो था कि मैं जा रहा हूँ. वो अम्मा बोलेंगी बेटा मुझे वैसे ही बता देते कि तुम्हारा जाने का प्लान है. फेसबुक क्या तुम्हारा हर वक्त मैं चेक करते रहूंगी, फेसबुक, इंस्टा स्टेटस, हर जगह व्हाट्सएप, बल्कि व्हाट्सएप स्टेटस भी लोग दूसरों के चेक करते हैं. क्यों करते हैं भाई, बहुत टाइम है. और लिटरली स्टेटस डाला था, कभी कभी ऐसी बात नहीं मैं भी डालती हूँ, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ मतलब कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या खा रही हूँ इसमें मैं सोचती हूँ दूसरों को क्या इंटरेस्ट हो सकता है. आज मैंने नाश्ते में क्या खाया, यू नो आज मेरी वाइब क्या है, नोबडी रियली केयर्स. ओके, और अब जो बहुत ही कूल किस्म के सेलिब्रिटीज हैं वो भी नहीं डालते, कहते यार मतलब वो अपनी अगर मूवी की प्रमोशन कर रहे हैं तो अपनी मूवी की प्रमोशन की चीजें डाले होते हैं. वो अक्सर अवॉइड करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ या अपने बच्चों की फैमिली की तस्वीरें डालना, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ये है कि वो हर चीज डाले होते हैं. और बच्चों की बात करें, अपने बच्चों की चीजें आपको कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए, ना बच्चों की तस्वीरें. मुबारक हो आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं और हर इंसान को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, बच्चे होते ही प्यारे हैं और अपने बच्चे तो दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे होते हैं, लेकिन आपके बच्चे हैं, बाकी लोगों को इतना प्यार नहीं आ रहा. और अगर आपकी जो पर्सनल जो आपकी फैमिली आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं बच्चे अपने ही अच्छे, तो आप जो है अपनी तस्वीरें बिल्कुल प्राइवेट रखें, खासतौर पर जो लोग रिजल्ट डाल रहे होते हैं. ओ माय गॉड, अगर बच्चे का आपके अच्छा रिजल्ट आ गया है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो. वो सोशल मीडिया पे डालने की क्या जरूरत है, कुछ तो पूरी रिपोर्ट कार्ड डाल रहे होते हैं ताकि आपको देखे और गुस्सा चढ़े. है इसका बच्चा देखो कितना काबिल निकला, मेरा बच्चा पास ही नहीं हो रहा या मुश्किल से पास हो रहा है. और फिर अगर अच्छे स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है तो फिर स्कूल का पूरा लोगो वो सब दिखाना होता है. क्यों दिखाना यार. अच्छा फिर वो अब ये होता है कि बच्चे अगर ग्रेड टू से ग्रेड थ्री भी जा रहे हैं, बल्कि केजी क्लास से भी अगर वो पास करके दूसरी क्लास में जा रहे हैं तो बाकायदा पूरी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है. अच्छा ठीक है, अब ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई है तो मतलब हम क्या करें यार, वो तो हर साल होगी, हर साल हम देखेंगे उनका रोब में है. और यहाँ पे हो गया यूनिवर्सिटी, मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था तो यूनिवर्सिटी जाके मैंने वो रोब पहना था और वो ग्रेजुएशन वाली टोपी पहनी थी तो मुझे खुशी हुई थी. अब तो बच्चे बचपन से ही पहन रहे हैं, उनको तो एक्साइटमेंट ही नहीं होगा. जब वो बड़े होकर ग्रेजुएशन या मास्टर्स करेंगे तो हर साल ही ग्रेजुएट हो रहे हैं. लेकिन खैर ऑफकोर्स दिस इज योर थिंग, मगर मुझे लगता है लोग बहुत ओवर शेयर करते हैं चीजें और खामखा नजर लगवा रहे हैं, क्योंकि आप जस्ट कीप योर सेल्फ प्राइवेट, दैट्स व्हाट आई फील. और लड़कियां वो अपनी खूबसूरत इंस्टाग्राम पे कोई भी हो सकता है, गर्ल्स लाइक दे आर लाइक रियली क्रेजी पीपल आउट देयर. यू डोंट हैव टू शेयर एवरीथिंग, आप बस अपनी पर्सनल प्राइवेट रखें प्रोफाइल, लेकिन यू नो मतलब लोग हर चीज शेयर कर रहे होते हैं, राइट. तो खैर उमेर का भी मैसेज आया हुआ, अस्सलाम वालेकुम, हम तो जानते हैं कि इंसान की आंखें पढ़ने वाली होनी चाहिए, खुली किताब होती हैं आंखें, अब कहते हैं सब पढ़ जाते हैं. अच्छा ठीक है, एक सेकंड में पढ़ लूँ आपका मैसेज आराम से. हाँ अस्सलाम वालेकुम, हम तो ये जानते हैं कि इंसान की आंखें पढ़ने वाली होनी चाहिए, खुली किताब होती हैं आंखें, आप पढ़ पाते हैं ये लोग और सब पढ़ जाते हैं हमें तो. वो कह रहे हैं कि जी मैं तो एक खुली किताब हूँ, छुपा नहीं सकते. मुझे लगता है कि आपकी वाइफ आपको बिल्कुल जान जाती है और मतलब क्या कहता है, शी नोज यू टू वेल, और आप उससे कुछ छुपा नहीं पाते. हाँ कुछ बीवियां अपने हस्बैंड्स को बहुत अच्छे से जानते हैं और कुछ हस्बैंड्स अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से जानते हैं. वो कहता है जब ज्यादा स्वीट हो रही हो वाइफ तो उसको कोई फरमाइश अपनी पूरी करानी होती है. तो खैर आप बताइए आप कैसे इंसान हैं. जी हाँ मैं आपसे बोल रही हूँ जो अभी इस मौसम में वाइट शर्ट पहन के जा रहे हैं, मतलब बादल छाए में कोई और कलर पहन लेते, लेकिन खैर है मर्जी है, कुछ लोगों को वाइट से बड़ी मोहब्बत है. और लेकिन पता है वाइट भी हर कोई कैरी नहीं कर सकता ऑनेस्टली. कराची के अंदर वाइट कैरी होने के करने के लिए जरूरी है कि आपकी गाड़ी नई हो और एयर कंडीशन हो, वही लोग वाइट शर्ट पहन सकते हैं. वैसे वाकई में वाइट शर्ट पहन के जाना भी एक स्टेटस सिंबल है. और मैं जानती जियो के प्रेसिडेंट इमरान असलम साहब, ही वुड ऑलवेज वेयर वाइट. मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब से वाइट कलर ही पहनते हैं, उनका एक स्टाइल है. और उनके बेस्ट फ्रेंड भी वाइट पहनते थे, यू नो, एंड आई एम लाइक यार क्या सीन है आप दोनों का, मतलब. लेकिन खैर
آلرائٹ, آپ بتائیں کہ آپ کتنے پرائیویٹ انسان ہیں, یا سب کچھ آپ بتا دیتے ہیں, اور ہمیں انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسیجز کا. اور اب ہم کیا کریں, کوئی گانا شانا سن لیں؟ آئیے سنتے ہیں ٹریک.

0: Viva la Bank!
1: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.

वेलकम बैक, आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। और कैसी जा रही है आपकी गुड मॉर्निंग? अच्छी जा रही है, मौसम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आज, क्या बात है। थैंक यू मेहर अशरफ, आपने पिक्चर भेजी और एनजी हंसी आ गया, सो रैंडम, ओके यू नो क्लिक एंड द सॉन्ग वॉज ऑल्सो फॉर यू। और आर्यन सारी कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ कम्प्लीटली ओपन बुक, nor am I entirely private. I'm somewhere in between. When there's trust, I open up about myself, but where it feels necessary, I keep my boundaries clear. Maybe that's just my way. Moving forward by recognizing my space and my people, that balance just feels right to me. Thank you so much, Ali Ansari, aur aapke message ke liye. You have spoken like a true corporate person. Corporate world ke andar apne raaz rakhna bahut zaruri hai, apni boundaries maintain karna bahut zyada zaruri hai, kyunki log advantage uthate hain, har koi janna chahta hai aapke bare mein, aapki koi na koi kya kehte hain weakness aapki pata chal jaye, aur isme sabse best tarika ye hai ki khamoshi ikhtiyar ki jaye, apni personal life ke bare mein किसी को पता ही ना हो। और मैं तो एक खुली किताब हूँ, मुझे लगता है कि मेरे राज कम है और लोगों को मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता है कहीं ना कहीं, और अब तो रेडियो भी लोगों को पता चल चुका है लेकिन लोग प्राइवेट होते हैं एंड अपने राज रखने का ज्यादा फायदा है मेरे ख्याल से। और चलते हैं और भी मैसेजेस शामिल करते हैं। आदिल हसन कहते हैं, सियाने कहते हैं जो बात अपने तक रखी जाए वो ताकत रहती है, बाहर निकलते ही कमजोरी बन जाती है। कोई गहरी बात कर दी है वैसे आदिल हसन साहब आपने, है ना, क्या बात है। ये कुछ मैसेज होते हैं, तानियां बनती हैं, तानियां भाई, वेरी गुड, ओके। और गुड मॉर्निंग नहीं बोलो जी, आमिर जफर सिद्दीकी कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अपनी पर्सनल बात हर किसी से शेयर नहीं करनी, आपको नहीं पता दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है। जैसे स्पेशली ऑफिस में ये पॉलिटिक्स दिखाते हैं, देखने में आते हैं। शेयर योर पर्सनल टॉक्स विद योर पेरेंट्स, वाइफ एंड दोज फ्रेंड्स हु आर रियली लॉयल विद यू। बिल्कुल सही है, और ऑफिस के अंदर आप याद रखें आपका कोई दोस्त नहीं है। आप जब तक ऑफिस में हैं लोग साथ खाना खाते हैं, यहां जब बॉस ने आपको कहा ओके बाय, वही दोस्त नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता, कोई पलट के फोन नहीं करता, इवन इफ यू आप बेहतर जगह पे चले जाएं और आप पुराने लोगों के साथ आपने 8-10 साल काम किया, वो आपको पलट के कॉल नहीं करेंगे, फोन नहीं करेंगे, भूल जाएंगे जैसे कि आप कभी थे ही नहीं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन टच रहते हैं और बात करते हैं, और बस ये, और क्योंकि या तो वो जेलस हो जाएंगे कि आप उससे बेहतर जगह पे चले गए और वो वहीं पे सड़ हैं, या फिर वो बोलेंगे यार अब क्या मतलब, अगर वो आपको निकाला गया नौकरी से तो बिल्कुल ही आपसे ताल्लुक नहीं रखेंगे। हम दर्दी के 1-2 दफा फोन, उसके बाद भाई हमने तो पहले ही मना किया था भाई, बहुत से ज्यादा बातें ना करो, देखा तो खैर। लेकिन अपना राज अपने साथ रखना चाहिए, और लेकिन ये क्या समझाएं, अगर लोग अपने राज रख रहे होते तो फिर सोशल मीडिया पर इतना हंगामा नहीं होगा, लोग अपनी हर बात बता रहे होते हैं। और जब रिलेशनशिप टूट जाती है, जब रिलेशनशिप होती है तो उसकी तस्वीरें शेयर कर रहे होते हैं टुगेदर फॉर एवर, और उसके बाद जब टूट जाती है फिर उसी की बुराइयां कर रहे होते हैं एक्स की, तो किसी ने क्या कहा था भाई, किसने कहा था सब कुछ डालो, और अब तो ब्रेकअप्स और मेकअप, उसने उसको अनफॉलो कर दिया तो ये पता चलता है कि अच्छा दे आर नॉट टुगेदर एनी मोर, क्योंकि फला सेलिब्रिटी ने अपने यू नो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को अनफॉलो कर दिया है, तो ये तो हैं। और मैं कहती हूँ कौन लोग हैं जो ये देख रहे होते हैं किसने किसको अनफॉलो कर दिया है, मतलब कुछ लोग हैं जिनका काम ही प्राइवेसी इन्वेड करना होता है। खैर आप बातें चलती रहेंगी, आप बताइए, अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया तो मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप क्या एक प्राइवेट इंसान है, अपनी बातें अपने तक रखते हैं, और जो या आप एक ओपन बुक है, जो दिल में आया बोल दिया, सबको बता दिया मैं कहाँ जा रहा हूं, मतलब एयरपोर्ट तक की तस्वीरें, वहां गए नाश्ते में क्या किया उसकी तस्वीरें, भाई हमें नहीं जाना, तुम वेकेशन पे गए हो, हम क्यों, हम यहां सड़ हैं कराची के अंदर बारिश का इंतजार कर रहे हैं और तुम अपनी तस्वीरें हमें भेज रहे हो हॉलैंड से, मतलब लिटरली। सो प्लीज तस्वीरें लोग शेयर कर रहे होते हैं, उनको बहुत शौक है, और तो खैर आप जैसे इंसान हमें बता दें, और इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का आज इस समय के फेसबुक पेज पे या आज इस समय इंस्टाग्राम पे, बातें बहुत हो चुकी हैं, पता नहीं सुबह सुबह मुझे स्ट्रिंग्स बड़ा याद आ रहा है, स्ट्रिंग्स इज गुड एट एनी टाइम, क्या कहते हैं।

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims और sunroof।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया, इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide. Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
3: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat aur zawabit lagu hain.
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में ₹15,000 या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या ₹50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: This program is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्म-ए-इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफाद-ए- आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने अपने आप को 3 बार मौत देखा।
5: टाइम से मनु ऐसे के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने साड़ियों वीडियो बनाया, सानू मारिया, सब छुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करे।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्भाव के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365।
8: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
9: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
8: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
10: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
9: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हम इससे क्या।
8: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हूँ।
10: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मी
11: میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی
9: سر, باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
11: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
12: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
9: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
12: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 ٹریفک اپ ڈیٹ.
13: پاکستان ایف ایم 100 پر ٹریفک اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں فاروق اظہار. شہر کراچی کی سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک کی تو صورتحال کچھ اس طرح ہے. یونیورسٹی روڈ سے وہ ٹریفک سکورہ چورنگی سے تماما کی جانب جا رہا ہے, اس پر ٹریفک کا بہت زیادہ دباؤ ہے. گاڑیاں بمپر ٹو بمپر موو کر رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں سے گزرنے میں دشواری کا سامنا ہے. جبکہ راشد منہاس روڈ سے وہ ٹریفک جو الدین پارک سے بگروڈ شارہ فیصل کی جانب جا رہا ہے, اور وہ ٹریفک جو جوہر موڑ سے جوہر چورنگی, جوہر چورنگی سے جوہر موڑ اور وہاں سے شارہ فیصل کی جانب آ رہا ہے, اس پر بھی بہت زیادہ ٹریفک کا دباؤ ہے. لہٰذا وہ تمام لوگ جو ان راستوں پر سفر کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے آئیں تاکہ بر وقت اپنی منزلوں پر پہنچ سکیں. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے ایف ایم 100 پاکستان.
1: دس ٹریفک اپڈیٹ واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आजय समीहा। आज हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि क्या आप एक खुली किताब की तरह आपकी बातें सबको बताएं, आप पूरे ऑफिस को बताएं, आप पूरे खानदान को बताएं, या आप कहते नहीं मैं सब कुछ छुपा के रखता हूं। कुछ तो कुछ थोड़े एक्सट्रीम पे होते हैं कि उनकी कुछ लोगों की कोई बात किसी को नहीं पता होती, कब आए कब आता है कब जाता है, और लेकिन कुछ लोगों की हर बात सबको पता होती है, वो खाना भी क्या खाते हैं सबको बताते हैं, आज हमने ये खाया। ओके, और खैर मैं भी ऐसी खुली किताब टाइप थी, क्या कहते हैं अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर अननेसेसरी चीजें भी लोगों में बता रही होती थी, और लोग बस सुनते हैं, और लेकिन नहीं बतानी चाहिए। मुझे लगता है कि अकलमंद इंसान जो है ना वो इस तरह की बातें नहीं करता। अब दमीर कहने अस्सलाम वालेकुम समिया, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा सोशल इंसान हूं, और जब मैंने सोचा तो अल्फाजों पर तर्जमानी की, अपनी प्राइवेसी की, अपनी जिंदगी किताब कुछ पढ़ने बहुत सारे लोगों को दिखा दिए, जिसमें खाना है, जिसमें पसंद है, जिसमें फन है, वरना ठीक से तो घर वाले भी नहीं जानते हमारे बारे में। सच है ये आपकी सोच है आबिद अमीर के, आपको लोग नहीं जानते। हर इंसान को लगता है कि हमारी कुछ बातें छुपी हुई हैं और हम अंदर से एक बहुत गहरे इंसान हैं। लिटरली हमें लगता है कि हम बहुत गहरे इंसान है, नहीं कोई गहराई हमारे अंदर, ठीक है। और लेकिन आपके बारे में जाहिर है लोग ज्यादा जानते हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो अपने बारे में बातें बता रहे होते हैं और शेयर भी कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है आबिद अमीर जैसे लोगों से कि जब लोग ओपन अप करते हैं तो दूसरे लोग भी आके उनसे ओपन अप करते हैं, और जो बंदा अपने लिए दिए रहता है लोग कहते हैं हटाओ अपनी बातें बताता नहीं, हम क्यों बताएं उसको अपनी बातें। और एक तीसरे लोग भी होते हैं जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने बारे में जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ले लेते हैं बातों बातों में, राइट। तो ये एक बात है। मोहम्मद अली अंसारी कह रहे जवाब है मेरा कि बातें हैं, मेरा जाहिर है, मेरे दिल में कुछ भी नहीं रखता, बोल देता हूं। ओके, हाँ जी, मैं तो एक खुली किताब हूं। अदनान अहमद कह रहे हैं मेरा तो मानना है मुसलमान अपने कॉल ऑफ फेल का पक्का होता है, जो दिल में हो वही जबान पर। प्राइवेसी से उस हद तक कुछ बातें अपनी फैमिली और रब के लिए रख लेता हूं, बाकी जिंदगी सीखने सिखाने का नाम है। तो शेयर करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, मुझे लगता है साफ गोई से दिल का बोझ हल्का होता है। हाँ, कुछ चीजें प्राइवेट रखता हूं, लेकिन दोस्ती और रिश्तों में शफाफियत ही असल सुकून देती है। हर बात हर किसी से शेयर नहीं की जाती, मेरा मानना है कुछ बातें सिर्फ आपकी अपनी होनी चाहिए, उससे इज्जत भी रहती है और सुकून भी। जिस पर भरोसा हो उसके सामने खुल जाओ, बाकी दुनिया के लिए मुस्कुराहट ही काफी है। बहुत अच्छी बात की है, मुस्कुराहट काफी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी वाकई में परेशानियां प्रॉब्लम्स नहीं बताते, ऑफिस के अंदर बॉस को न जाने कितनी गालियां दें, लेकिन बाहर जाके बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं, मेरा बॉस तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उससे अच्छा तो बॉस नहीं है दुनिया में, और मेरे ख्याल से यही समझदारी है। अपने ऑफिस की बुराइयां बाहर नहीं करनी चाहिए, ऑफिस में ही कर लें, और घर की बुराइयां भी, अपनी बीवी की स्पेशली, अपने शौहर की बुराइयां, अपने ससुराल वालों की बुराइयां कभी मैके में जाके ना करें, मैके की बुराइयां कभी ससुराल में आके ना करें। और ये दोनों के लिए, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए, लड़के तो अपना मुंह बंद रखना जानते हैं, खवातीन का बड़ा मसला है। वो जो ऑफिस भेजकर हस्बैंड्स को, वो जो अम्मियां को, अम्मियों को फोन करती हैं जो है ना बीवियां, आपको पता है उसने ये कहा, कुछ अम्मियों को फोन करती हैं, कुछ अपनी बहनों को फोन करती हैं, फिर अगर बहनोई की तरक्की हो गई तो अपने शौहर को कोसती हैं, ये वहीं के वहीं रहे, उसको देखो उसके शौहर ने कहां तरक्की कर ली। तो ये बात है कि जब आप जितनी बातें करेंगे उतने ही राज आपके जो है ना बाहर निकल आते हैं। मेरे साथ भी यही मसला हुआ है, मेरी सारी बातें रेडियो पे आके मैंने सबको ही बता दी है, मतलब एक अवामी बातें मेरी हो गई हैं। चले, और बच्चा कुछ लोग बड़ी बातें छुपाते हैं, कुछ लोग अपनी बर्थडे भी छुपा रहे होते हैं, पता नहीं कोई बर्थडे है, कोई चुगली हो गई है, वो मैं तो सबको बता रही होती मेरी सालगिरह क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, है ना। और लाला रुख भी कह रही है कि मैं बहुत सब कुछ बता देती हूँ, है ना। और राइट, और आपने अगर हमें सुनना शुरू किया है और आप ये सोच रहे हैं कि कैसी बातें हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि हम ऐसी ही बातें करते हैं। और अगर

भी करना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे, आरजे समिया के इंस्टाग्राम पे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या आप एक खुफिया इंसान है, खुफिया या आप एक खुली किताब है। ऑलराइट, और आज बस मैं अपनी पसंद के गाने लगाने वाली हूँ। ऐसा मूड मेरा थोड़ा सा खुद गर्जाना है तो सुनते हैं। ये भी खैर बताने वाली बात नहीं थी, मैंने बता दी। तो ये सुनते हैं मेरा पसंद का, बस मेरी पसंद का ये गाना क्लासिक टाइम में।

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागात से हासिल की जाती हैं ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम
2: Step Schools से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311117837.
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
4: ठीक तो है, लेकिन special नहीं.
3: मतलब?
4: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat. Alloy rims और sunroof.
3: Special तो लग रही है.
4: और price सिर्फ 64,49,000.
3: आप समझ आया? इसे special edition क्यों कहते हैं? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.

जी आप है हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आज समीह। आज हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि आप एक ओपन बुक की तरह लोगों को पता है या आप एक राज हैं या तुम आपको कहना तुम एक गोरख धंधा हो। क्या खूबसूरत कलाम है राइट। और आप लोगों के पैगामात हमारे पास आ रहे हैं। एनजी कह रहे हैं कि मैं एक आई एम एन ओपन बुक रिटन इन जिब्रिश विद हाफ द पेजेस मिसिंग। कि मैं एक ओपन किताब हूं मगर उसके आधे जो है ना वो ऐसी किताब है जो जिसकी राइटिंग ही किसी को समझ नहीं आ रही और उसके आधे पेजेस मिसिंग है। क्या स्टाइल है अपनी ओपन बुक होने का बताने का। हाँ ओपन किताब तो हूं लेकिन समझ में नहीं आती मैं किसी को। लेकिन मैं कोई बात बताऊं कि लोग समझना चाहते भी नहीं। हमको लगता है कि आप के अंदर लोग जाना चाहेंगे आपको। और मर्दों को तो कोई जानना नहीं चाह रहा होता कि जी सोचेंगे तो तुम कैसे हो तुम्हें क्या पसंद है। ये शादी से पहले ऐसी हरकतें होती हैं, शादी के बाद कुछ जानने लायक नहीं होता सिवाय इसके कि खाने में उसको क्या पसंद है। अच्छा और हमारे पास आप लोगों के पैगामात हैं। अली रजा का भी मैसेज आ गया। अली रजा के प्राइवेट फॉर सम एंड ओपन बुक फॉर लव वंस। घर वाले तो जानते ही होते हैं कि मतलब बंदे का क्या मिजाज है क्या मिजाज नहीं है क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। और आबदमी के मौजू पर ही आपसे सवाल है बंदा कितना बंद किताब रहे कितना अपने अंदर चीजें छुपा के रखे और कौन स्पेशल है किसको बताएं सोच में और उलझ जाए बात करने से दिल हल्का होता है ये कितना सच है। हाँ ये बात करने से हल्का होता है लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि वक्त के साथ साथ मैंने इस बात का अंदाजा लगाया है कि शायद गिनती के दो तीन लोग ही हैं जिनके साथ आप खुली किताब की तरह बिहेव कर सकते हैं और बाकी किसी को आपकी किताब समझनी नहीं है तो आपने खोलनी क्यों है किताब उनके सामने। कहते हैं ना डोंट थ्रो योर पर्ल्स इन फ्रंट ऑफ स्वाइन्स के अपने मोती भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। कोई आपको जानने में इंटरेस्ट नहीं है किसी को। और तो बस खासतौर पे जब आप काम कर रहे होते हैं यू वर्किंग आपको अपने राज बहुत ही राज रहना अपने पास ही रखने चाहिए। मैंने प्राइवेट लोगों को लाइफ में ज्यादा कामयाब होते देखा है जब अपनी चीजें नहीं बताते खामोशी से। जहां जॉब मिली फटाफट पहले वो जॉब सिक्योर की और फटाफट रिजाइन कर दी। यहां तो जी दिल के बाद जुबान पे बॉस तक को पता है कि हम नौकरी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खामोश लोग ज्यादा कामयाब होते हैं जो हर चीज बता देते हैं या बहुत ज्यादा ओपन बुक टाइप होते हैं वो अपने आप को वल्नरेबल कर लेते हैं ओपन टू अटैक्स कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं अपने आप को आप जितना छुपा सके उतना अच्छा। हाँ घर वालों को सब पता होता है और घर वालों से भी जो लोग चीजें छुपाते हैं तो फिर फंसते हैं। अब वैसे अगर आपकी शादी प्राइवेट कह रही हूं अगर आपकी शादी ज्वाइंट फैमिली में है तो कोई जो है ना वो कोई चीज जो है ना वो प्राइवेट ही नहीं होती। और मुझे मजे की बात लगती है ना जब आगे ना सासें ये बोलती हैं मतलब बहुओं को देखो बेटा हमारे आना बिरयानी में आलू नहीं डलते और मतलब आलू मत डालना। मतलब यार हमारे यहाँ कौन नवाब फैमिली है आपके यहाँ आलू नहीं डलते वो घर से वो आलू। और मुझे समझ में था लोग बगैर आलू की बिरयानी कैसे खा लेते हैं। बोटियां तो वैसे कम मिलती हैं बीफ बिरयानी तो नजर ही नहीं आती जिंदगी के अंदर किस्मत से मिलती है उसके आलू ही से तो बिंदे का पेट भरता है। मतलब कौन लोग हैं ये कहाँ से आते हैं जो बगैर आलू की बिरयानी खाते हैं। मुझे वाकई में लिटरली ये मुझे समझ नहीं आता कि कौन लोग हैं। और हमारे यहाँ मुझे ये डायलॉग बहुत बुरा लगता है हमारे यहाँ है मतलब आप कहाँ रह रहे हो मतलब कोई सीन नहीं है आपका पता नहीं कौन सी पुराने इलाके में आप रह रहे हो और हम ऐसे उनके भरम होते हैं गांव पता नहीं कौन से गांव से आ रहे होते हैं पैसे पास नहीं है। लेकिन नहीं हमारे यहाँ ऐसे होते हैं हमारे यहाँ रिवाज है। कौन भाई रिवाज तुम लोग PhD हो कोई नोबेल प्राइज मिला है आप लोगों के खानदान में किसी को कि बहुत ही सियाने लोग यहां से गए हैं तो इनकी बात हमने माननी चाहिए। पाकिस्तान का मसला यही है रिवाजों में चले जा रहे हैं लोग क्या कहेंगे ये वो। भाई शादी ब्याह होगा तो भी सारे लोगों को कबीले सरदार और ड्रामे भी ऐसे आ रहे होते हैं अजीब अजीब ड्रामे मैं देख रही होती हूँ सरदार साहब की शादी है सबको बताओ क्या है। ये नहीं बता रहे कि सरदार साहब ने पीछे दो तीन और शादियां भी की हुई होती हैं तो जो लोग बड़े अपने प्राइवेट भी लोग जो बनते हैं ना उनके पीछे ही बड़ी चीजें होती हैं। तो खैर मुझे खाने की बातें याद आ गई हैं खाने बिरयानी और मुझे मैं बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो चुकी हूँ। मुझे टिंडे गोश्त खाने का आजकल बड़ा दिल चाह रहा है टिंडे गोश्त। आई डोंट नो कि टिंडे का मौसम है नहीं मगर कभी दोस्तों आपने टिंडे गोश्त खाए
ٹنڈے گوشت شوربہ ود بوائلڈ رائس، دس از مائی فیوریٹ فوڈ لائک ایور، مائی کمفرٹ فوڈ. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی ہو سکے تو ٹنڈے گوشت مجھے بھجوا دیں ہیں. اور سمجھ گئے ہوں گے وہ لوگ جن کو میں یہ بولنے چاہ رہی ہوں، ٹنڈے گوشت آپ کے اگر خاندان کی روایت ٹنڈے گوشت بنانا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں. اور مجھے میسج کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ چاہے نہیں یہ والا میسج والا نہیں ہے، مجھے آپ میسج کریں بس فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ. خیر لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک. ٹاپک یہ کہ آپ ایک پرائیویٹ انسان ہیں یا پھر آپ کھلی کتاب ہیں، جو بھی آپ کا سینہ میں بتا دیں. فی الحال تو میں ٹنڈے گوشت کو یاد کر رہی ہوں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ میرے سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ پرائیویٹ رکھ ہی نہیں پاتے، اپنے اندر کوئی فیلنگ نہیں رکھ پاتے، نہ محبت کی ہو یا نفرت کی ہو. آئی ہیو ٹو ٹیل دا ادر پرسن کہ مجھے وہ کیسے لگتے ہیں، اور اس نے پوچھا بھی نہیں ہے. تو مجھے اگر کوئی پسند آیا تھا لائف کے اندر تو میں نے تو بتا دیا تھا، اور بعد میں بہت پچھتائی تھی. اور تو ایسا ہوتا ہے کبھی لڑکے نہیں بول پاتے تو لڑکیوں کو ہی فرسٹ اسٹیپ لینا پڑتا ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، لیکن ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ لڑکیوں کو ویٹ کرنا چاہیے کہ لڑکا خود بول دے گا، اس کے پسند آئے گا تو وہ بول دے گا، کیونکہ یہاں زیادہ فارورڈ خواتین کو پسند نہیں کیا جاتا. تو ایڈوائس ٹو گرلز از، سجیشن دیٹ از، ٹرائی ٹو کیپ اٹ لو. اور رائٹ، اور اس میں لڑکا کہہ رہا ہے کہ یار تم نے جو کہی بات میں چپ رہا، تو اتنا بھی پرائیویٹ نہیں رہنا چاہیے. آئیے سنتے ہیں.

0: जी आप सुन रहे थे जूनियर जमशेद की आवाज में ये ट्रैक चुप रहा, कुछ बोल नहीं पाए। कहीं कहीं बोलना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई, आप दिल में ही रखे रहेंगे तो उसकी शादी कहीं हो जाएगी, और ना ही कोई ऐसी खुली किताब होगी जी दूसरी मुलाकात में बंदा आई लव यू बोल दे। तो एक तरह तरीका चलना पड़ता है, कहीं कहीं दिल की बात छुपानी पड़ती है, कहीं बतानी पड़ती है। आपका क्या सीन है, आप बहुत प्राइवेट इंसान हैं या आप एक खुली किताब हैं? हमें मैसेज करें, हमें तो बता दे यार, हमसे सनम क्या पर्दा। तो हमें आप मैसेज करें अजय समिया के फेसबुक पेज पे या एट अजय समिया इंस्टाग्राम पे। इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का, और हम मिलेंगे आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रूपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रूपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: का वीकली लकी ड्रॉ विनर सियालकोट से जीती है रोहिरा काशिफ ईवी बाइक। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रूपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
5: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्ने आजादी मुबारक।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जोंग मंथली प्रो मैक्स प्लस पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रूपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू है।
11: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका
12: at shopping of 5,000 rupees
11: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
13: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
14: This program is brought to you by
15: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
14: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
16: FM 100.
14: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

ऑलराइट जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद आरजे समीहा, और हम बात कर रहे हैं कि क्या आप एक प्राइवेट इंसान है, अपनी बातें अपने खुद तक रखते हैं या सबको बताते हैं अपनी फेसबुक पे जाके और इंस्टाग्राम पे जाके और लिंक्डइन पे जाके। और लिंक्डइन, ओ माय गॉड, लिंक्डइन मुझे ज्यादा इनॉय करता है। हर कोई अपनी तस्वीरें डाला होता है, एक इवेंट में जाते हैं उसकी पता नहीं कितनी तस्वीरें। भाई इवेंट के अंदर आप इवेंट में गए, सही है, आपने डाल दिया, आप बहुत खुश हैं, डाल दिया। अच्छा, आप आपको ढूंढने कि आप उसमें 20 लोगों के अंदर आप कहाँ खड़े हुए, आपको ने आपको जूम इन करके देखें। अच्छा चलो ठीक है, इवेंट की आपने शो मानी थी। अच्छा मैं इवेंट होस्ट कर रही होती हूँ और लोग क्या करते हैं कि शो इवेंट खत्म होने के बाद ना वो स्टेज पे आके तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं और माइक के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, डाइस पे आके तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं कि शो ये करना चाह रहे होते हैं कि लिंक्डइन पे कि इवेंट उन्होंने होस्ट किया है। और मेरी तस्वीरें नहीं होती, उन लोगों की ज्यादा तस्वीरें होती हैं, तो मैं कहती हूँ सीरियसली मतलब किसको दिखाना है और किसने खुश हो जाना है। तो जो आप लोगों से प्यार करता है ना वो आपसे प्यार करते हैं, और जिनको आप लिंक्डइन में, वैसे कोई आपसे प्यार नहीं करता। लिंक्डइन इज लाइक अ बिग कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन, टेलिंग पीपल के हम आपसे कितना आगे हैं लाइफ के अंदर। लेकिन खैर, सोशल मीडिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपनी प्रेजेंस नहीं बनाएंगे, अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स बेचनी है तो आपको ये चीजें करना जरूरी होता है, स्पेशली फ्रॉम द एचआर पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, लेकिन शो ऑफ का एक टाइम होता है, और अभी हम रिजल्ट की बातें कर रहे थे तो रिजल्ट आ गया है इंटर का, और कमाल की बात है कि फर्स्ट पोजिशन जो है वो एक की नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोगों की है। तो फर्स्ट पोजीशन इन प्री इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन वाज जॉइनली सिक्योर्ड बाय मोहम्मद साद आदिल एंड अब्दुल्ला जमाल ऑफ आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज एंड आयशा राशिद ऑफ बहरिया कॉलेज करसास विद 1006 मार्क्स आउट ऑफ टोटल ऑफ 1100 विद एन A1 ग्रेड। तो पहली पोजीशन जो है वो तीन लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं हासिल की है, उसमें दो लड़के हैं एक लड़की है, और आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन की है और साथ साथ बहरिया कॉलेज। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दीज वेरी वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स, अल्लाह इनको कामयाब करे। और उनकी सबसे ज्यादा मुबारकबाद तो उनके पेरेंट्स को जाता है कि उनकी जो ये मेहनत है रंग लाई है और माशाल्लाह इतने काबिल बच्चे हैं, अखबार में तस्वीरें भी आई हैं। ये हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि हमारी तो आ नहीं सकी, हमारे बच्चों की आ जाए, और चक्कर में बच्चों को बहुत हार्ड टाइम भी देते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसे काबिल बच्चे होते हैं जो माँ बाप का सर फखर से जो है वो बुलंद करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात की, लेकिन खुदा के लिए अपनी पूरी फैमिली को, पूरे खानदान को, उनके खानदान को इतना बता बता के भी लोग चढ़ जाते हैं, हाँ मुबारक हो, मुबारक हो। ऑलराइट, और आप लोगों के मैसेजेस का इंतजार है, आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे, आरजे समीहा के इंस्टाग्राम पे। आप मुझे ये बता रहे हैं कि क्या आप एक प्राइवेट इंसान हैं या आप एक जो है नहीं, हर चीज आप बता देते हैं, दिल में नहीं रखते। और एक बार हुसैन तो मुझे पता है बड़े प्राइवेट इंसान हैं, वो नहीं ज्यादा बोल पाते हैं, वो ज्यादा वो क्या कहते हैं लिख लेते हैं, लेकिन वैसे बात करो तो वो इतनी बातें नहीं करते। मुझे वैसे अक्सर प्राइवेट लोग क्या कहते हैं जो अपनी बातें अपने तक रखते हैं वो ज्यादा इंट्रीक करते हैं कि उनके पास आप कहते हैं क्या है, क्यों इतना चुप है ये बंदा, बातें क्यों नहीं कर रहा। तो मुझे ज्यादा वो उनसे बात करने में ज्यादा दिलचस्पी होती है, जो खुद आकर के अपनी बातें बताए जाए। मैं कहता अच्छा ठीक है भाई, मैं बातें करती हूँ, तुम भी बातें कर लो, खत्म ही ना हो बातें। खैर, बातों का सिलसिला थोड़ा रोकते हैं और गाना सुनते हैं। और आजकल जो है ना ये ड्रामा चल रहा है और मुझे OST वैसे पसंद है, तो आइए सुनते हैं फरहान सईद की आवाज में। और एक्टर भी फरहान सईद ही है इस ड्रामे में, उसे क्या टैलेंट है एक्टिंग भी और सिंगिंग भी। आइए सुनते हैं बस तेरा साथ हो।

0: Little Bang. Easy Wala Bang.
1: 100 FM.
2: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
1: 100 FM।
3: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
4: On facebook.com/fm247365
5: fm247365। बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ। ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों के इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए तरजीह। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: ایف ایم 100
6: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
7: السلام علیکم پاکستان۔

0: 10:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
3: किसने कहा

0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Back to back, only music, no RJ talk.
4: Only music, no RJ talk.
3: This is FM.

0: dedication for maximum music.
1: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।

0: Viva la Bank.
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राब्ता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानिब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के अंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: FM 100.
0: us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

is facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपके शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
3: FM 24/7/365

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatma Khan, aur aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji hungi aapse khoob sari baatein share karenge, kuch information aur saath hi saath program mein hoga bahut sara music, bahut sari baatein, kuch sawal bhi aapse puchhenge, aapke haal hawal bhi janenge. तो चलें जी इन सारे मौजूदों पर जल्दी से बात भी करते हैं, लेकिन इस सबसे पहले होगा प्रोग्राम लॉन्च टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से नहीं बल्कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ. तो चलें जी लेट्स बिगिन.

0: ऑल राइट जी, तो सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, मैं रास्ते में हूँ और साथ ही साथ कराची के गड्ढों में हूँ क्योंकि रोड हो चुकी है खराब और इस वजह से जरा देर हो रही है पहुंचने में, तो सिंड्रेला प्लीज वेट करना, आई विल बी राइट बैक। तो सिंड्रेला को भाई इंतजार करना चाहिए, अगर सिंड्रेला कराची से ताल्लुक रखती है तो उसे कराची के हाल हवाल का पता होना चाहिए और इस बात पर खफा नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंड्रेला को भी जानना चाहिए कि भाई कराची की रोडें जो हैं वो बन रही हैं, तो नाराज होना सिंड्रेला का जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनता। तो इसलिए किसी और की दुल्हन भी नहीं बनना है, वेट फॉर द राइट टाइम। ऑल राइट जी, सो खैर प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का भी बाकायदे से आगाज हो चुका है, सिंड्रेला को हमने शामिल कर लिया था, हमने कहा चलो जी बातों का सिलसिला तो जारी है, साथ ही साथ हम सिंड्रेला को भी जो है वो शामिल कर लेते हैं। अच्छा जी, स्टेटस अपडेट हो चुका है आरजे फातिमा खान के फेसबुक पेज पर, तो वहां पर आप कमेंट करें, अपनी अपनी हाजिरी लगाएं, हमें बताएं कि इस वक्त आप लोग हमें कहां से सुन रहे हैं। और अभी तो बस शो का आगाज हुआ है, यानी कि बहुत सारी बातें अभी बाकी है मेरे दोस्तों, तो अभी बहुत सारी चिटचैट आप लोगों से होगी, बहुत सारी ताजा तरीन सूरत हाल से हम आपको आगाही फरहम करेंगे, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ चिटचैट होगी, तो भाई आप लोग अपनी प्रेजेंट लगा दें आरजे फातिमा खान के फेसबुक पेज पर जो हमने अब बना लिया है, उस पर आप लोग अपनी अपनी हाजिरी लगाएं, स्टेटस इज updated over there। तो भाई क्या हाल है मेरे तमाम सुनने वालों के, कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगानी? यार आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज ऑफ KHI का वेदर, जो कराची का मौसम है वो बहुत अच्छा चल रहा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बारिश का तो सदमा एक दिल पर है ही है, लेकिन साथ ही साथ ही अच्छे मौसम जो है ना वो एक अच्छी वाइब्स दे रहा है, जो कि उमूमन तौर पर अगस्त का महीना अच्छा ही गुजरता है हम लोगों का, हालांकि जो अभी सेप्टेम्बर और अक्टूबर है वो थोड़ा टेरेबल होता है इस लिहाज से, क्योंकि ये होता है कि उसमें ना हब्स बड़ा हो जाता है और गर्मी या हवा चलना बंद हो जाती है, तो वो थोड़ा सा ये जो एक टाइम होता है वो होता थोड़ा सा पेनफुल है, लेकिन ऑल दो मौसम गुजारे लायक होता है। लेकिन आजकल भाई अगस्त तो ऐसा लीड कर रहा है कि दिन के औकात भी और रात के औकात भी मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, जिसे मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आजकल लोगों को जो है वो गुस्सा शुस्सा भी थोड़ा कम आ रहा है। तो क्या जान लें कि आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? किसी की गलत बात पर, रास्ते में उल्टा आने वाले लोगों को देखकर, चाय का जायका अच्छा ना होने पर, या फिर बस ऐवे ही बैठे बैठे गुस्सा आ जाता है, या आपका मूड कभी भी जो है वो अच्छा नहीं रहता और बस रैंडमली छोटी छोटी बातों पर आपको आ जाता है शदीद वाला गुस्सा। तो किन किन बातों पर आता है आपको गुस्सा, जरा जल्दी से हमें मैसेज करके बता दें और कमेंट करें भाई। और मैं सोच रही हूँ कि आज ना स्टेटस को अपडेट कर सवाल भी ऐड कर देते हैं कि भाई आपको गुस्सा किस बात पर सबसे ज्यादा आता है। अच्छा पता है आज ये सवाल पूछने की वजह यह है क्योंकि मौसम तो बड़ा अच्छा है, तो फिर इस तौर पर आपको गुस्सा आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ रहा है तो किस बात पर आ रहा है हमें जरूर बताएं। जब तक हम चलते हैं ब्रेक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के साथ, किस बात पर आता है गुस्सा जल्दी से बता दें हमें।
1: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है, ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

ऑलराइट जी, सो वी आर बैक। और मुझे भी ऐसा लगना शुरू हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि शायद मेरा गला भी जो है वो खराबी की जानेब जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हर लिंक में मेरी आवाज कुछ तब्दील नजर आ रही है, तो कहीं मैं भी तो इस कराची में फैले हुए फ्लू का शिकार तो नहीं। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो स्टेज है वो इब्तदाई है और इसमें अगर काबू पा लिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो इसके लिए आई थिंक इट्स बेस्ट रेमेडी जो होती है वो कोई ये होता है कि आप जो है वो कोई कावा पी लें या फिर गरम गरम चाय पी लें। आई मस्ट से कि गरम गरम चाय से ना एक तो हम लोगों का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। हालांकि कहते हैं कि जब आपका गला खराब हो, गला मुतासर हो, तो उस दौरान आपको चाय से ज्यादा जरूरी है कि कावे या इस तरह की चीज पिए। और उसी के साथ साथ जो है वो आप एक बॉयल अंडा लें और उसकी जो है वो जर्दी निकाल दें और इसमें जो है वो थोड़ी सी काली मिर्च और बहुत लाइट सा नमक डाल के खाएं, तो इससे जो है वो आपका गला बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि चाय के आगे हम कहां सुनते हैं किसी की, क्योंकि चाय से भाई हम सबका है बड़ा ही गहरा ताल्लुक। और लाइट जी, तो हमें नसीर खोसो ने भी मैसेज किया है फेसबुक पर जो आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल पेज पे, कहते हैं वक्त सिर्फ घड़ियों की सुई नहीं बदलता बल्कि इंसान की सोच, लहजा और रिश्तों की हकीकत भी बदल देता है। बात तो सही है भाई, बिल्कुल ऐसे होता है कि वक्त जो है वो सिर्फ घड़ियों की सुइयां नहीं बदलता बल्कि बहुत सारी चीजों को बदल देता है। बहुत सारी चीजें आपके साथ बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं, वो कुछ हो जाता है जो कि शायद आपने वाकई में सोचा नहीं होता। तो इसीलिए हमें बचपन से लेकर आज तक वक्त की कदर और वक्त की अहमियत बताई गई है कि सही वक्त पर सही फैसला या सही डिसीजन लेने से हमें कितनी सारी जो है वो चीजें आसान हो जाती हैं। और ऑब्वियसली हम इंसान हैं तो कभी कभी हमने सही वक्त पर कुछ गलत फैसले भी लिए होते हैं, बिकॉज हमें ऑब्वियसली किसी भी इंसान को नहीं पता कि उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, कि अगर इस फैसले से क्या हो जाएगा। अक्सर औकात कभी कभी कुछ गलत फैसले हमें सही राह पर भी ले आते हैं, हमें बहुत सारी चीजें भी उस लिहाज से पता चल जाती हैं। तो ये है कि डिसीजन मेकिंग इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग, बट हर फैसला मुझे लगता है कि इंसान को ना बहुत कुछ सिखा देता है। तो ये बात तो है, लेकिन बिल्कुल भाई जो घड़ियों की सुइयां ही वक्त नहीं बदलती बल्कि हकीकतन तौर पर हमारा एवरी डे इज चेंजिंग, हर चीज चेंज हो रही है, हर तरफ आपको कोई ना कोई तब्दीली नजर आ रही है, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो ये बात तो ठीक है कि भाई वक्त जो है वो तेजी से गुजर रहा है। ऑल राइट जी, उसी तेजी से आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। हम ट्रैक की जानिब चलते हैं और आते हैं वापस के बाद।

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
0: 0311117837. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365. You're in tune with the lunchtime special on the big one. FM 100.

ओके, सो भाई ट्रैक कर दिया है हमने आपको डेडिकेट, जो कि हमारे प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत होती है। तो भाई अब आप जल्दी से कनेक्ट हो जाएं हम लोगों से आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, और वहां पर आप कमेंट करें और आप बता दें कि भाई आपके लंच में क्या मौजूद है, क्या बन चुका है, क्या बनने जा रहा है, क्या खाने का इरादा है, या फिर कुछ पकाने का प्लान नहीं है, मूड नहीं हो रहा है और सोचा है कि जी क्यों ना कुछ बाहर से मंगवाया जाए। अच्छा वैसे ये होता है ना, मूड होता है क्योंकि अब तो हम ऐसा लाइफस्टाइल गुजारने के बड़ा आदी हो गए हैं जहां पर हमारे लिए आजकल ना द ओनली वन एंटरटेनमेंट इज दिस कि बाहर से खाना खाते हैं या बाहर का खाना मंगवाते हैं, क्योंकि हमें बाहर का खाना बहुत ज्यादा पसंद है और इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर का खाना अगर हम रोज रोज खाएंगे तो जी तबीयत तो खराब होगी ही। लेकिन फिर भी ना आजकल हम लोगों की द ओनली वन एक्साइटमेंट यही है कि चलो जी बाहर से खाना खाते हैं या कुछ बाहर का ट्राई करते हैं, और आजकल सोशल मीडिया पे हमें इतनी मजे मजे की चीजें नजर आ रही होती हैं कि हम कह रहे होते हैं चलो कोई बात नहीं आज खा लेंगे कल नहीं खाएंगे। लेकिन खाएं, बिल्कुल खाएं, वंस इन अ वीक, या वंस इन अ वीक भी वैसे ज्यादा है क्योंकि अगर हम वंस इन अ वीक खाएंगे तो उसका मतलब है कि हम महीने में 4 मरतबा बाहर का खाना खाएंगे। लेकिन अगर हम इसी रिवायत को ट्वाइस या मैक्सिमम थ्राइस अब मंद करें, यानी कि 2 से 3 मरतबा बाहर का खाना खा लें तो ये ठीक रहेगा, और ये ना तो हमारी सेहत को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट। तो भाई जल्दी से मैसेज करके बता दें कि आपके लंच में क्या मौजूद है, क्या बन चुका है, या फिर कुछ मंगवाने का इरादा है। मौसम बड़ा खूबसूरत है तो इससे मद्देनजर रखते हुए आज हमने ये ट्राई किया है। अभी मैं किससे बात कर रही थी, किससे मेरी बात हो रही थी ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ कह रहे थे कि मेरा ना ये खाने का दिल चाह रहा है, आई डोंट नो इट वॉज निहारी और पाई, आई थिंक शायद पाई के बारे में बात हो रही थी। तो मैंने कहा हाँ, ये अभी अगर आपको खाने का दिल चाह रहा है तो आप बना सकते हैं, इसलिए क्योंकि सिर्फ मौसम अच्छा है, और जब मौसम अच्छा होना तो फिर आप इस तरह की चीजों की जानिब जा सकते हैं, जैसे पाए हो गए या निहारी हो गई, इस टाइप की चीजें आप दोपहर के लंच में खा सकते हैं क्योंकि अभी मौसम अच्छा है। जब वो तपती हुई धूप पड़ रही होती है और गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, कराची का दर्जा हरारत 45 है, तो उस दौरान तो आपका दिल चाह रहा होता है कि सिर्फ ठंडी ठंडी चीजों को खाया जाए। तो अभी वक्त और मौका अच्छा है, अगर आपको कोई इस तरह की चीज पसंद है तो यस आप जरूर खा सकते हैं, खा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो भाई जल्दी से हमें बता दें कि आपके लंच में क्या है मौजूद। जब तक हम भी चलते हैं ट्रैक की जानिब, सवाल हमने आपसे पूछ लिया है तो ऑब्वियसली कर रहे हैं हम जवाब का इंतजार। तो जल्दी से मैसेज करें और बता दें लंच में क्या है, आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: मेरी जिंदगी है तू, एंजॉय कर रहे थे आप लोग इस ट्रैक को. और साथ ही साथ हमने ये भी सवाल पूछ लिया कि भाई आपके लंच में क्या है, तो ये भी हमें जरूर मैसेज करके बताएं कि आपके लंच में क्या मौजूद है 3636 पर या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर. उसी के साथ साथ जरा पेट्रोल की नई कीमतों पर भी बात कर लेते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में आजकल जो है वो एवरी डे इजाफा या कमी हो रही है. बट द थिंग इज दैट कि इस वक्त पेट्रोल की कीमतों में हो चुका है इजाफा, पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में इजाफा हो चुका है. इस वक्त अगर बात की जाए पेट्रोल की पुरानी कीमतों के हवाले से तो वो थी जी 325.43. जी हाँ, यानी कि 325 रुपये था पेट्रोल की कीमत. और इस वक्त जो पेट्रोल की नई कीमतें हैं वो हैं 331.20. तो जी हाँ, पेट्रोल की कीमतों में भी लगभग 6 रुपए का इजाफा हो चुका है. उसी के साथ साथ अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल के पैसों में भी हो चुका है इजाफा. उसके ओल्ड प्राइस थे 38.95 और इस वक्त नई कीमतें जो हैं वो हैं 390.42. जी हाँ, पेट्रोल की कीमतों में भी और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है. डीजल की अगर कीमत के ऊपर बात की जाए तो इस वक्त जो है वो 6.47% जो है वो पैसे परसेंट नहीं आई मीन सॉरी रुपए बढ़ाए गए हैं पेट्रोल में. और उसी के साथ साथ जो है वो पेट्रोल की कीमतों में 5.77 पर लीटर बढ़ाए गए हैं, यानी कि 5 रुपए लगभग जो है वो पेट्रोल पे बढ़े हैं और 6.47 जो है वो डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है. यानी कि 6 रुपए का डीजल में इजाफा हुआ है और 5 रुपए का पेट्रोल में इजाफा हुआ है. और ये है थोड़ा सा हार्ड ब्रेकिंग आवाम के लिए. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जब नेक्स्ट हम आपसे खबर शेयर करें पेट्रोल की तो वो ये हो कि पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी हो चुकी है, 5 रुपए की, 6 रुपए की, डीजल में भी. हालांकि डीजल की अभी जो करंट सिचुएशन सुनने में आ रही है वो ये आ रहा है कि जी वैसे भी डीजल जो है वो 400 रुपए के बहुत करीब है, बिकॉज अब जो है वो 391 रुपीज आपको पेट्रोल मिल रहा है. और ये सुनने में आ रहा है कि विद इन डेज जो है वो डीजल जो है वो आपको 400 रुपए का मिलेगा. सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन. हम तो चलते हैं ब्रेक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के साथ.
1: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ.
2: It's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैशबैक और होंडा एलेंट्रा जीतने का मौका. At shopping of 5,000 rupees only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
1: This program is brought to you by
3: Step School से foundation हो strong. Call now at 0311117837.
1: Like us on facebook.com/fm247365.
4: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

जी, तो पेट्रोल और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ और ये बात बताती हमने आपको ट्रक इसलिए सुना दिया ताकि आप रिलैक्स हो जाएं, टेंशन ना लें। अब क्या करें भाई, इस सूरत हाल के साथ हमें चलना तो है। और हमने कहा चलो जी, अभी आपको बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से हमने आगाही फराहम की है कि जी पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए और डीजल की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा हुआ है। और मैंने कहा कि ये सुनकर लोग शायद ज्यादा परेशान ना हो जाएं। वैसे तो परेशानी के साथ साथ लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया होगा, बिकॉज ये तो आफ्टरनून का टाइम है। बहुत सारे लोग जो है वो सुबह सुबह अपना पेट्रोल डलवा रहे होते हैं अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले, यानी कि ऑफिस वगैरह जाने से पहले। समटाइम्स लोग रात में डलवा लेते हैं ताकि सुबह जो है वो पता नहीं कितनी लंबी लाइन हो या टाइम ना जाया हो, उस चक्कर में भी बहुत सारे लोग रात में ही डलवा लेते हैं। और वो लोग जिन्होंने 12 बजे से पहले डलवा लिया होगा वो तो खुश हो रहे होंगे सोच के कि चलो जी एक दिन के ही सही 5 से 6 रुपए की बचत हो गई है। लेकिन जिन्होंने नहीं डलवाया उनके लिए लिटिल बिट सैड। ऑल राइट जी, इसी के साथ साथ नई रिसर्च पर भी बात करते हैं। जी हाँ, नई रिसर्च के मुताबिक एक ताजा तरीन सूरत हाल है, उसमें ये कहना है कि एक रिसर्च के मुताबिक हर मोमेंट की फोटो लेना जरूरी नहीं है, उस मोमेंट को यादगार बना दें। जब हम फोटो लेने में ज्यादा बिजी हो जाते हैं तो हम उस एक्सपीरियंस की डिटेल कम याद रख सकते हैं, इसलिए कॉग्निटिव ऑफ लोडिंग कहा जाता है, यानी हम अपनी मेमोरी के बजाय फोटो पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए कभी फोन साइड पर रखें और मोमेंट को फुली एंजॉय करें। ओके, ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। यानी कि नई रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि कॉग्निटिव ऑफ लोडिंग का शिकार हो रहे हैं हम लोग, और ये नई रिसर्च है जो कि अभी यूनिवर्सिटी ने करी है बर्मिंगम की साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। इस रिसर्च के तहत हमें इस चीज का पता लगाया गया है कि हम अब तस्वीरों पर भरोसा करने लगे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी मोमेंट, कोई भी डिटेल्स या कोई भी चीज होती है ना, तो हम उसे याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए क्या करते हैं कि उस चीज की तस्वीर ले लेते हैं, क्योंकि अब हमें पता है हमारे मोबाइल में है ना। तो ठीक है, अब इस चक्कर में हम क्या करते हैं, अपने ब्रेन को कम यूज करते हैं, अपनी ब्रेन की मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करते जो कि बहुत पावरफुल है। लेकिन अब हम चीजों को याद इसलिए नहीं रखते ये सोचकर कि यार मोबाइल में है ना, जब जरूरत होगी मोबाइल से निकाल लेंगे। लेकिन इसकी वजह से हमारी मेमोरी भी बहुत वीक हो रही है, तो इसीलिए ये जो हर चीज पे हम फोटोज पर ट्रस्ट करने लगे हैं ना, इस वजह से हम मुश्किलात का शिकार होने लगे हैं। सो यस प्लीज डोंट डू दिस, ऐसा ना करें, तस्वीरों के भरोसे ना रहें, थोड़े से मोमेंट को एंजॉय करें और याद रखें, ये जरूरी है। आप अक्सर औकात लेटे लेटे याद करें कि हाँ यार ये हुआ था, तब की बात है, उसकी बात है, ना कि ये करें कि ये याद कर रहे हो हम कि यार चलो मोबाइल में पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो हमें याद आ रहा होता है। लेकिन अब वाकई में, अब रियल में भी, और यानी कि थोड़े टाइम पहले की बात तो थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा लोगों का फोकस इस तरफ है कि किसी भी चीज को याद रखने के लिए हम अपने ब्रेन के बजाय तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जल्दी से आओ भाई तस्वीर खींच लो ताकि हम याद रखें। सो दिस इज रॉन्ग, डोंट डू दिस, ट्राई टू रिकॉग्नाइज। और ट्रैक की जाने चलते हैं और आते हैं वापस, जब तक आप लोग जाएं फेसबुक के पेज और फातिमा खान पर, वहां पर कमेंट करें, वहां पर मैं स्टेटस अपडेट कर दिया है किस बात पर गुस्सा आता है और कौन सा ट्रैक सुनना चाह रही हैं।

0: हेलो जी, तो आ गए वापस। भाई गुफ्तगू का सिलसिला जो आप लोगों के साथ जारी था, क्या आपने भी मेरी इस बात पर फोकस किया और देखा अपने मोबाइल फोन में कि वाकई में आजकल हम लोग जो है वो पिक्चर्स पे कितने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। हमारा ट्रस्ट ये होता है कि जी पिक्चर है तो याद आ जाएगा कि हाँ यार ये तब की बात है, ये मुझे याद करना था। हमारी नंबर मेमोरी भी बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि अब हमें नंबर्स भी याद नहीं रहते, बिकॉज हमें पता है कि भाई कॉन्टैक्ट तो सेव है, जब भी कुछ जानना होगा तो चलो जी हम इस नंबर के जरिए पता कर लेंगे कि क्या है ताजा तरीन सूरत हाल। ऑल राइट जी, हमारे पास जो है वो मैसेजेस का सिलसिला भी जारी है। आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर हमने कहा कि जी आप मैसेज करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। नसरीन का भी हमारे पास मैसेज आ चुका है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं, बहुत सारी दुआएं, सदा शादो आबाद रहें। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, मेरे मिजाज बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं मजे में हूं, आप बताएं आप कैसी हैं, क्या हाल हवाल है आपके। और भाई हाल हवाल जो है वो सबके हमेशा बेहतरीन रहे, मुझे बस यही मेरी एक दुआ होती है अल्लाह पाक से कि सब लोग जो है वो खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि हंसते मुस्कुराते चेहरे जो है ना वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो नसरीन आप भी अपने हाल हवाल से हमें जरूर आगाही फरहम करिएगा। जब तक मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना ब्रेक की जानब जाएं और वापस आए सज्जाद अली के एक बहुत ही जबरदस्त से ट्रैक के साथ, सो वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। और ये वो ट्रैक है जो सबका फेवरेट भी है और इसे सुनने के बाद सबको मजा भी आएगा। तो कौन सा ट्रैक है इसके लिए आपको करना होगा लगभग एक मिनट का इंतजार, क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आते हैं और करते हैं इस ट्रैक को शामिल।
1: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग, कॉल नाउ एट 03111117837।
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
5: टापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
8: Join Fatima Khan.
7: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
8: Midday break a blast.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.

0: your location for maximum music.
1: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
1: This program is brought to you by
4: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
5: Abhi Raja Ustad aa jayega, phir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
6: Hamare maashre mein jinsi badsalooki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote, balki ladke bhi iska shikar hote hain. Ladke aur ladkiyon dono ki hifazat ka khayal rakhein, dono ko samjhaye chahe apna ho ya paraya. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
7: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
8: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
9: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.
10: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: لاهور، اسلام اباد، هيدرباد، رهن، فان. Across the nation.
1: This is FM 100. FM 100.
2: Jazz Cash के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने Jazz Cash अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए Jazz Cash है ना.
1: 100 FM.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. Jazz Cash से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए Jazz Cash है ना.
3: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhaago!
5: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi service se naye shoes kharide aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cashback hasil kare. Ye offer mulk bhar ke tamam service stores par dastiyab hai. Aaj hi shopping kare aur cashback ka fayda uthaye. Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
6: Apni kamai se अपने घर की groceries लेना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
7: तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी Jazz Cash ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए Jazz Cash है ना.
8: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली

0: The bank, easy wala bank.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: 100 FM।
3: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: वाला बैंक।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/fm247365 fm247365

0: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
3: 365. Let's celebrate
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

जी जनाब, और बातें बातें बातें, और क्यों ना हो बातें, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिनीना रेडियो. मैं हूं एमी खान, द वन एंड ओनली FM 100 पे. और आज है सेकेंड डे ऑफ वीक, यानी मंगल का दिन. और मंगल के दिन यूं तो बहुत सारी, हर दिन जो है हर तरह की चीजों में, हर तरह की एक्टिविटी में भरा हुआ है, लेकिन जो मंगल होता है ना, वो आपको जरा सीधा कर देता है, क्योंकि मंडे जो होता है वो आपके थोड़े नखरे उठा रहा होता है, और मंगल जो है बिल्कुल सीधा कर देता है कि चलो बस बहुत हो गई, काम करो, मूड बनाओ, काम करो, पढ़ो और आगे बढ़ो. हाँ, जिन लोगों के पास कोई भी ऐसा तो है नहीं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आ जाती है तो बड़ी सारी चीजें जो है वो डिफरेंट हो जाती है. आपका विजन डिफरेंट हो जाता है, आपके थॉट्स डिफरेंट हो जाते हैं, आपकी चॉइसेस डिफरेंट हो जाती हैं, आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग चेंज हो जाती है. तो बहुत सारी चीजें वक्त के हिसाब से चेंज हो जाती हैं, और जो कि होनी भी चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम है. तो जनाब, आप आज और इसी वक्त जो है ना, इसी लम्हे से अपनी जिंदगी को बिल्कुल यू टर्न दें. और यू टर्न क्या दें कि पहली बात तो ये कि अपने पेस्ट ऑफ नहीं होना किसी भी चीज से, किसी भी काम से, किसी भी अंदाज से. कहीं से भी आपने कोई ऐसी गली नहीं पकड़नी जिससे आपको ही लगे कि यार मेरा तो ये वाला मामला था ही नहीं, और मैं क्यों इसमें पड़ गया. तो हेल्प भी करें, सब कुछ करें, लेकिन एक वकार, एक मयार रखें, एक इतना इतनी उसके अंदर एक डिस्टेंस रखे कि जिसमें आप जो है वो आपके आपका कुछ भी डैमेज ना हो. और डैमेजेस सिर्फ दिखावे वाले नहीं होते, जो इंटरनल डैमेजेस होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं. तो बिल्कुल सबसे पहले अपने आप को बचाएं, उसके बाद कुछ और बचाएं.

जी जनाब, और बातें बातें और बातें और बातों में एक चीज बड़ी खास है। आप कहीं भी हो, किसी भी जगह मौजूद हो, एक चीज जो मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, जो मैं महसूस कर रही होती हूँ, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीट कैट, स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट इवन क्रो भी, आप जो भी देखते हैं कि वो आ रहे हैं करीब, आप कहीं डाइन आउट कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर बिल्ली कुत्ते वगैरह आपके करीब आ रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो उनको हिट कर रहे होते हैं, हटा रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज थोड़ी सी रिस्पेक्ट जो है ना, उन जगहों पे इन्वेस्ट करें जहां से आपको कुछ नहीं मिलना है। आप अगर कुछ अपने लिए हजारों रुपए का ऑर्डर कर रहे हैं तो एक साफ सुथरा खाना या एक अच्छी चीज या अपने पास से थोड़ा सा बचा के उनको दे दिया करें। वो इस उम्मीद से आपके पास आते हैं कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए। आपको पता है हम तो इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, हमारा सारी जिंदगी का जो वक्त है वो शायद हमारा ट्रैफिक ही ले गया, लेकिन लोग तो बाकायदा अर्ली मॉर्निंग स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट कैट को फूड देने निकलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने निकलते हैं, उनको साफ सुथरा खाना देने निकलते हैं। उन्होंने कहीं कहीं स्पॉट्स बनाए हुए होते हैं, पानी के लिए स्पॉट्स बनाए हुए होते हैं कि वो परिंदे या जानवर या कोई जो है वो वहां से पानी लेकर जाएगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी है तो आप कुछ इस तरह की जिम्मेदारी ले लिया करेंगे। या कभी आप सिग्नल पे रुके हुए होते हैं, या कभी आप पेट्रोल पंप के पास होते हैं, या कभी आप पंचर लगवा रहे होते हैं तो आसपास देखा करें, बिल्ली या कुत्ते वगैरह जो बैठे हुए होते हैं, कुछ भी, कोई बिस्किट दे दें, कोई उनको दूध दे दीजिए, कोई पानी दे दीजिए। या हॉस्पिटल्स के पार्किंग में आप देखते होंगे कि ये वो बात मैं कर रही हूं जो मैंने खुद किया हुआ है। ये मैं इसलिए नहीं आपको बता रही हूं कि मैंने किया है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूं, लेकिन जब हम नजर डालते हैं ना तो पता चलता है, जब हम किसी चीज को कंसीडर करते हैं तो पता चलता है। जब हम अपनी जिंदगी में इतने इतने मदहोश हुए हुए होते हैं, इतने ज्यादा अपने अपने हाल में बेहाल हुए हुए होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कितनी चीजें हैं, कितनी मखलूक हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं। हम किसी जगह तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा ना जिम्मेदारियों का या किसी चीज का, किसी मामले का। तो जब तक आप पहुंचेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? जब आप खुद ही इस काबिल नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें यहां तक भी करना था? तो अपने सेंसेस को, अपनी पूंजी को ऐसी जगह लगाएं, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से आपको कोई फायदा नहीं होता। उस जगह पे मत खर्च करें जहां से आपको सिर्फ फायदे ही फायदे उठाने हैं, उस जगह से जहां से आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का फायदा चाहिए कि यार मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि जब आपको सिर्फ इस बात का होता है ना कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको रिटर्न कुछ दे रही है, फिर आप उसमें गैर शामिल कर देते हैं, फिर आप कैलकुलेटिव हो जाते हैं कि मुझे कितना इस चीज में इन्वेस्ट करना है, मुझे कितना इस चीज को बेहतर करना है, मुझे किस हद तक इस चीज के साथ अपना मामला रखना है। तो मैं ये समझती हूं कि ज्यादा बेहतर वो है जिसमें आप बेखर्च हो जाए, वहां लगाएं जहां से आपको कुछ नहीं मिलना।

0: This program is brought to you by
1: Phoenix Laga aur bhul ja, Phoenix Laga aur bhul ja.
0: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.

0: seat, alloy rims or sunroof.
1: Special to lag rahi hai.
0: Aur price sirf 64,49,000.
1: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा,
5: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा.
6: facebook.com/fm247365 fm247365

खुद से भी मिला करें, सर उठा के चला करें। खुदा के तरीके हम नहीं समझ सकते, हम उससे क्या गिला करें। दुनिया संग दिल बनती मेरी दुश्मन, हम कम अज कम खुद से ही सुला करें। कम बोला करें, ज्यादा सुना करें, रब देता है माफी फिर गुनाह करें। ये ताकत ठिकाने बदल सकती, कलम की ताकत आफत भी पलट देती। लिखारी जान लेवा हूँ पर लिखाई ही रोज़ जीने का सबक देती। वरना जिंदगी मौके तो कम देती, महफिलों में तो रौनक भी हमसे थी। इधर हसल करते करते पूरा दिन गया, उर्दू रैप मैं, उर्दू रैप मेरे बिन क्या। फैक्स नहीं, मुझे गालिब जैसा लिखने का फैज नहीं। वो हबीब है मेरे तो मुझसे दूर क्यों।

लेके ना दिल को बिल बोर्ड पे अब दिखे शक्ल इनको, मेरा बैंक बैलेंस लगता था पिन कोड, अब सफर देख सिर्फ सिफर गिनतू। आई बिलोंग हियर जाने का मूड नहीं है, हेडलाइनिज्म तेरी कोई न्यूज नहीं है, क्या वो सुनते पर करते महसूस नहीं है, वादे टूटे पर टूटे हैं सूल नहीं है।

जैसे ही अलहदा सुल गए, कटे मेरे पर फिर भी जाने कैसे उड़ते, मुझे उड़ने दे, टूटे जो दिल वो आज जुड़ने दे, इन आंखों को खुशियों से भरने दे, अल्फाज मेरे दिल में उतरने दे, मंजिल तो खुश हो ठहरने पे, ये घर मेरा जड़ को ना मरने दे, उभरेंगे सूरज ये ढलने दे, वक्त लगे खुद को बदलने में।

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
2: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 03003641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
5: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
4: मतलब
5: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims और sunroof.
4: Special तो लग रही है।
5: और price सिर्फ 64,49,000।
4: अब समझ आया इसे special edition क्यों कहते हैं? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
6: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
8: PTCL Flash Fiber Azadi offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000, free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye, 500 all net minutes aur bahut kuch. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्तें जवाबित लागू हैं।
9: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।

0: 100 FM.
1: चम चम चम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: Bank, easy wala bank.
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
1: स्पेशल तो लग रही है.
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
4: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
5: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है.
6: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
7: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
9: एंड सरसब्स नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा.
10: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
11: हमने अपना कुछ 3 बार मौत देखा.
12: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा.
13: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया.
10: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
14: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा.
10: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकद्दसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने. हुकूमत पाकिस्तान.
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
15: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है. और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بروقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
16: facebook.com/fm247365 FM247365

अपसन मुझको पास आके बैठ फिर चेक कर लो पूरी है तो रेस एटीट्यूड अंग्रेज पर रेस वो ही जीते जो है स्टेडी एंड स्लो बैम बैम दिल धड़के डर करके कितने करता है हाँ सुन के तेरी सारी कहानी हर शैतानी करता है हाँ

0: 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
4: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर।

0: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
1: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए।
2: पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैश बैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.

0: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
1: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाए सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
2: किसने कहा था पैसे?

0: इट्स हैपनिंग आज भी, सो कीप अप। बाटा पर जैस कैश से 50% कैशबैक और होंडा एलेंट्रा जीतने का मौका
1: एट शॉपिंग ऑफ 5,000 रुपीस
0: ओनली। एंड यू आर स्टिल हियर, किसका इंतजार है, भागो।
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
4: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: dark ages of radio, it used to sound like this. Then, we introduced this.
1: This is FM 100.
2: Across the nation.
0: Assalamu alaikum, Pakistan. And even after decades, it is the most happening salutation on the airwaves. FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan.
3: Someone born to lead.
4: This is FM 100.
5: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
6: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
7: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
8: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
10: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
11: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
10: मतलब?
11: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims और sunroof.
10: स्पेशल तो लग रही है।
11: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
10: अब समझ आया, इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
1: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: वाटिका हफ्तेवार लकी ड्रॉ विनर साल कोटवा रोहिला काशिफ ईवी बाइक कटे वर्दी आने तमाम भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक सोने जा सिक्का ऐ बेशुमार इनाम कटे संगो था बस वाटिका शैम्पू जी बोतल के स्क्रैच करो ऐ ढेर सारा इनाम कटियो ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नर्शेस हेयर नेचुरली।

0: The bank, easy wala bank.
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
4: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ.
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
6: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्तें और जवाबित लागू हैं.

0: 15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
2: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: Federal Bank. Easy wala bank. अभी इसी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यूफोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 Light Us on Facebook.

0: Viva la Bank.
1: Vatika Weekly Lucky Draw Winner. Sialkot se jeeti hai Rohira Kashif EV Bike. Ab aap bhi har hafte car, EV Bike, Gold Coins aur beshumari inaamat jeet sakte hain. Bas Vatika Shampoo Bottle scratch karo aur win karo dhero inaamat. Try all new Vatika Shampoo. Nourishes hair naturally.
2: जैज कैश के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा एक करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
5: 100 FM। लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
6: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
8: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: PTCL Flash Fiber आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
10: इसने कहा था

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. ईजी पैसा डिजिटल बैंक, ईजी वाला बैंक.
2: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड The Jazz Cash app now.
3: Vachika Haftima Lucky Draw Winner Sal Kotwa Rohila Kashif EV Bike Kateverti And Tamabe Har Hafte Car EV Bike Sona Ja Sikka And Beshmari Naam Kate Sangota Bas Vachika Shampoo Ji Botal Ke Scratch Karyo And Dher Sara Inam Kateyo Try All New Vachika Shampoo Nourishes Hair Naturally
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: Bank, easy wala bank. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
3: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
6: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
3: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
6: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
5: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
6: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
3: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इबलाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई? महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
9: FM 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैट कैश है ना।
2: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
3: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑलनेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराय तो सवाबित लागू हैं।
4: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
5: facebook.com/fm247365
6: FM 100।
7: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
6: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: हर रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
1: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं, मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
2: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
3: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
4: PDCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शरायत सवाबित लागू है।
5: 100 FM।
6: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim and Khan. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
6: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाए सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू हैं।
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
7: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 9 PM.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: बाजी का हफ्ता वार लकी ड्रॉ विनर, सियालकोट तो रोहिला काशिफ ने ईवी बाइक जीती है। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकते हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
4: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagai sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagayein. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat aur zawabit lagu hain.
5: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
6: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करती। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے۔
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
13: Like us on facebook.com/fm247365
14: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
15: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, सियालकोट से जीती है रोहिरा काशिफ ईवी बाइक। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
4: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
5: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
6: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त सवाबित लागू हैं।
7: 100 FM।
8: छम छम छम, किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
1: PDCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू हैं.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें. मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है. इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे. सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें. जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#. अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए.
5: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
4: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए. याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है. लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं. शनाख्ती कार्ड की मंसूखी سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
6: FM 24/7 365 Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is FM 100.
8: Come on.

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100
3: 31 saal fm100 aapki awaaz. Assalamu alaikum pakistan
2: assalamu alaikum pakistan

0: खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: वाचिका हफ्ते वा लकी ड्रॉ विनर साल कोटवा रोहिला काशिफ ईवी बाइक कटे वर्दी आने तवा बे हर हफ्ते कार ईवी बाइक सोने जा सिक्का ए बेशुमार इनाम कटे संगो था। बस वाटिका शैम्पू जी बोतल के स्क्रैच करो ए ढेर सारा इनाम कटियो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नर्शेस हेयर नेचुरली।
2: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
3: 100 FM।
4: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
5: FM 24/7/365

0: स्टेशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाकें। आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहद। नशे पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। AMF का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 247365 FM 247365

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, आए हो अभी बैठो तो सही, जाने की बातें जाने दो, यानी के समझ रहे ना आप, हैं जी ते हैं जी। अरे भाई सवाल नहीं करना बल्कि कर लेते हैं, चले कर लेते हैं, सवाल ऐसा कर रहा हूँ कि जिससे अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो आपको अगर पता चलेगा तो आपको फायदा होगा। सेब खाने से क्या फायदा होता है, ये तो आपने मिसाल सुनी होगी ना, एन एप्पल डे कीप डॉक्टर अवे, कि अगर आप एक सेब रोजाना खाते हैं इसका उर्दू तर्जुमा, तो डॉक्टर आपसे दूर रहता है। जैसे कहते हैं ना हम, डॉक्टर तमाम दवाएं डॉक्टर क्या बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो बस ये सेब जो है वो डॉक्टर की पहुंच से दूर रखता है। तो सेब डॉक्टर की पहुंच से कैसे दूर रखता है, वजह क्या है, तो सेब में ऐसी कौन सी खूबी है कि जो इंसान खाता है तो उसको उसका क्या फायदा होता है, एक खूबी है तो वो आपने मुझे बतानी है 3636 पर, फ्रूट के हवाले से ही आज बताएंगे और पूछते रहेंगे आपसे, आप लोग जवाब देते रहेंगे, हम पूछते रहेंगे भाई 3636 पर। सबसे पहले जो फीता काटा है वो काटा है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, हमारे यूसुफ भाई पापोज से, तमाम सुनने वालों को और एफएम 100 की तमाम फैमिली को उन्होंने सलाम कहा, खुसूसी तौर पर हमारी प्यारी सी आंटी को, चाची को, अरूसा को, गुलबानों को, तमाम डॉक्टर्स को, इमरान भाई, खिताब लाला, गुफरान भाई और मेरे वालिद मोहतरम को उन्होंने सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम। आज तो भाई कमाल हो गया, गाना लगता है मैंने बिल्कुल सही चलाया, आए हो अभी बैठो तो सही, यानी के समझ रहे ना आप। आ गई है जनाब संजू, काफी दिनों से गायब थी, कह रही है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु, ए रूह मन आज की बैठक में जगह चाहिए होगी। अरे जनाब आप लोग, आपकी जगह तो पहले से ही बनी हुई है, गद्दी खाली थी, आप आकर बैठ जाइए। अपने पैगामात के लिए दिल की बातें हैं, सलामती और आफियत की अनगिनत दुआओं के फूल लेकर हाजिर हूँ। क्या बात है, बड़ी मतलब फुल टाइम वो क्या मुगलियाना अंदाज और लेकर आई हूँ इस यकीन के साथ, आप खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। खुशी में लिखा नहीं जा रहा कि क्या लिखूं, हाय लजी अनारकली, मगर फिर भी लिख रही हूँ इकलौते दिल की खुशगवार धड़कनों की मध्यम मध्यम सी कसक लिए धक धक से खुश आमदीद कहती हूँ। अरे बहुत खूब भाई, और पहले भी प्रोग्राम में गैर हाजिर रहती थी मगर राब्ता बरकरार रहता था। रूह मन घर के सामान की शिफ्टिंग की वजह से मोबाइल दस्तरत से दूर हो गया, पहली वजह साइलेंट पर था, फिर पावर ऑफ हो गया, किसी का नंबर डायरी में लिखा नहीं मिला जो आपसे रابطے में रहती, और रूहमन मैसेज की तवालत पर मत जाइएगा। मेरी अजीज जान शहजादी जरी नूर, काबिले एहतराम प्यारी सी मलिका नौरीन बहना, प्यार के लिए जितना लिखूं कम है, और उनके प्यार के लिए जितना लिखूं कम है, और मेरे दिल के करीब थर मेरे रूहमन, बस रूहमन सांसों की रवानी और वफा के इख्तिताम तक साथ रहना चाहती हूँ, और बिल्कुल साथ रहिए सनाखों पर। बहुत खूबसूरत अंदाज, और देखें मुझे पता था कि कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई काम होगा जिसकी वजह से संजू गायब है, लेकिन परेशानी का बायस उस वक्त बना ये अमल कि आपका गायब होना, कि जब ये पता चला कि जरीन नूर और नौरीन भैना इन दोनों ने कहा कि भाई फोन वोन बंद चल रहा है भाई, तो बस उस पर थोड़ी सी परेशानी हुई, तशवीश हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बता दिया कि वजह क्या थी। और आगे बढ़ते हैं जनाब। हेलो नदीम ब्रो, कैसे हैं आप, ठीक है ना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं मदीना बिरयानी वाला सलीम मेमन। अरे सलीम मेमन भाई बहुत दिनों के बाद आए, कैसन हो भैया, ठीक ठाक हो, बिरयानी बिरयानी ओके टेक चल रही, नाम ही इतना हसीन रखा है आपने मदीना बिरयानी सेंटर पर, क्या बात है। और इनामुल हक भी शहजादे आ गए हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप, आपके वालिद मोहतरम कैसे हैं, उनको झुक कर अदब से मेरा सलाम कहना। बिल्कुल कहेंगे जनाब। और आंटी चाची अरूसा संजीदा मोश्क सबा गुल अयुब लाला इमरान भाई समी भाई
सलीम भाई और सब सुनने वालों को प्यार भरा, चाहत भरा, मोहब्बत भरा, खुलूस भरा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम इनामुल हक। जीते रहें, मुस्कुराते रहें भाई, बहुत जबरदस्त मैसेज आपका। और अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? लाला संजीदा, आप ही मुश्क मानूर और सब सुनने वालों को सबा गुल का प्यार भरा सलाम। सबा गुल किथे गायब से तू हैं जी? चरता दी जी, अब मैं पंजाबी में नहीं पश्तो में बोले, चरता दी खोरा। और सलाम, कैसे हैं वाले साहब? संजू और सब को सलाम। और ये कह रही है हमारी शहजादी बहना जरीन नूर। जरीन नूर, आप आज आपकी संजू आ गई हैं, बल्कि हमारी संजू आ गई हैं। और नदीम भाई, अगर हो सके तो लाला के नाम अच्छा सा सॉन्ग कर दीजिएगा। सबा गुल कह रही है, सबा बिल्कुल कर देंगे। और अब्दुल वाहिद कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम, लव यू भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। और अयुबा प्रीदी आ गया, कहते जाने जगर या हबीब, कैसे आपको? सवागुल को, मुश को, महानूर को, हिना को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम और ढेर सारी दुआएं। थैंक यू। अच्छा भाई, संजू के और भी मैसेजेस हैं। कुछ दिनों में एहसास हुआ रूहे मन की आवाज से समाज का रिश्ता कितना मजबूत है। वैसे तो है, मतलब आवाज का और कान का समाज, वाह वाह वाह वाह, यही रिश्ता है। आपने सही फरमाया गुफरान भाई, डॉक्टर गुफरान साहब, क्या तर्जुमानी करते हैं आप इशारों में। आप यकीन माने, ये इशारे अगर कोई देखे, हम लोग तो खैर अब समझने लगे, कोई और अगर गुफरान भाई शीशे के उस तरफ से इशारे कर रहे हो और देख लें, तो वो बोलेंगे इनको क्या हो गया, ये कैसी बातें कर रहे हैं, और हम इनकी बातें समझ भी जाते हैं। तो क्या आपने बताया कि समात का और आवाज का और समात का क्या? हाँ, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत प्यारा रिश्ता की तर्जुमानी की है इन्होंने, आवाज और समाज की। अच्छा, रेडियो ऐसा मीडियम है जो दिलों को जोड़ कर रखता है। जब कान तरस जाते हैं मन पसंद आवाज सुनकर, लड़ने मनाने रूठ जाने की हसीन लम्हात को एक नसीहत, दोस्तों रिश्तों के नंबर्स कहीं और लिख कर महफूज कर लें, वरना मेरी तरह परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। खैर जी, आप आ गई हैं और सबसे पहले ये अमल आप खुद कीजिए, यानी कि समझ रही है ना, ताकि हम भी परेशान ना हो। अरे भाई, हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ भी आ गई, कहती हैं कि आप जो भी कहती हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जाएंगे एक ब्रेक की जाने।

कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरत

0: वेलकम बैक कहेंगे मेरे महबूब का, आया है मोहब्बत नामा ब्यूटीफुल ट्रैक नाहिद अख्तर साहब की आवाज, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होएगा। मैसेजेस माशाल्लाह माशाल्लाह से भरपूर तरीके से, और नदीम भाई मैं तो यही थी 3636 खराब था, बिल्कुल सही कहा सबा गोल, बिल्कुल सही कहा, ये नहीं खराब था, नेटवर्क का मसला था। और अयूब लाला कहते हैं जिगर सबा गुल मुश्क महानूर हिना को अच्छा सा गाना सॉन्ग, इन चारों के नाम कर दीजिए, बिल्कुल कर देंगे भाई, डोंट वरी। अनीस साहब कह रहे हैं भाई सलाम, कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है, और तमाम लिसनर्स को भी प्यार भरा उन्होंने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। और बहुत खुशी हो रही है संजू आ गई हैं हमारी रूह मन के लिए अच्छा सा सॉन्ग, आये हाय क्या बात है। जरीन नूर मेरी प्यारी बहन कह रही है, और जरीन नूर अगर तुम ये मैसेज ना भी करती तो हम आपकी जानिब से, अपनी बहन की जानिब से संजू को गाना डेडिकेट कर देते, यानी कि समझ रही है ना। रेहान सुन रहा है भाई, और रेहान हूँ बिलाल दोस्त और शाहिद ग्रुप में सुन रहे हैं भाई, शाहिद साहब भी सुन रहे हैं, रेहान के दोस्त जो है बिलाल भी सुन रहे हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। खामोजी खाम, अभी तुम सब में से किसी को भी सही तरह मैसेज लिखना नहीं आता, शाहिद भाई बिलाल भाई आप लोग भी तो सुन रहे हो यार, रेहान की थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो, बैठकर सुनते हुए जरा मैसेज वैसेज कर दिया करो यार, रेहान यही कहता है बस, मैं सुन रहा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वाह वाह वाह वाह। रेहान भाई कभी किसी को गाना डेडिकेट करना हो ना तो लिखा करो रेहान सुन रहा हूँ, और SONG सॉन्ग और D लिख दिया करो आगे, सिर्फ D, सॉन्ग डेडिकेट किसी को गाना, यानी कि फिर मैं अल्फाज अपनी तरफ से, यानी कि समझ रहे हो ना, जोड़ दूंगा। और वाह वाह वाह हमारा मेहमान भाई आ गया,
1: ओके हे बीबी रात को बरगद मार्केट के
0: है क्या,
1: अच्छा बीबी रात को बगैर नकाब के अपने बाल खोले सोहर के, सोहर से पूछती है ए जानू मैं कैसी लग रही, तो सोहर बोला कसम से बेगम अगर आयतल कुर्सी याद ना होती तो आज मैं मर जाता।
0: सलीम मेहमान भाई कैसा बात करता है यार तू, अच्छा जी मनाहिल आ गई हैं और कहती है नरीम भाई संजीदा को सलाम, और संजीदा के नाम पश्तो सॉन्ग प्ले करो, मनाहिल
1: संजीदा को पख्तो वख्तो नहीं आते यार, न समझ आते, और आज पख्तो गाना नहीं चलेगा, आज तो पाकिस्तानी मूवी का गाना चलेगा, नया और पुराना दोनों मिक्स चलता है।
0: मनाहिल पश्तो का गाना हम कल चला देंगे आपकी जानिब से। अनीस कह रहे हैं कल भी आपने एक मैसेज भी रीड नहीं किया, क्यों कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है,
1: और जी बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम ही था,
0: यानी कि समझ रहे ना अभी नहीं है। और अब्दुल वाजिद भाई जान अगर हो सके मास्टर सलीम साहब की आवाज, क्यों भाई मास्टर सलीम इंडिया में होता है या नहीं होता, सलीम रजा साहब होते हैं यहाँ पर, सलीम रजा साहब का गाना सुनाऊंगा आपको, अब्दुल वाजिद मास्टर सलीम, वाह वाह वाह सही मास्टर साहब जा रहे हैं आप। और थैंक यू नदीम भाई नाइस सॉन्ग सबागुल कह रही हैं, अभी लाला की जानिब से आएगा तो भी थैंक यू बोल रहे। नदीम भाई एप्पल इज फुल ऑफ आयरन दैट्स वाई इट कीप द डॉक्टर अवे साहिबजादा,
1: नको बाबा अमा एप्पल में आयरन होता है ये तो सबको पता है, है बाबा आयरन से बहुत सारे फायदे होते हैं ये तो सबको पता है,
0: लेकिन एक और वजह भी है साहिबजादा, वैसे जो आपने कहा है ये भी दुरुस्त है, लेकिन जो मैंने पूछा वो कुछ और है। पाकिस्तान बाजार से रेहाना मेरी बहना आ गई है, कह रही है सलाम अर्ज़ है भाई, आज आज आज नूर जहान के ये सॉन्ग लगा दें, अच्छा ये अब मैं पढ़ूंगा ढूंढूंगा मिल गया तो पक्का पक्का चलेगा। अदीला मेरी बहना आ गई, कह रही है सलाम प्यारे भाई नदीम गुड शो आपकी, रोमन रूहे मन को सलाम, और एक सॉन्ग भाई रूहे मन के दो गाने तो हो ही गए, तीसरा नौरीन की जानिब से होगा भाई, क्या बात है क्या बात है। और भी देखते हैं। अच्छा, ये अदीला, जरीन नूर, नौरीन तौसीफ और संजू, ये सब एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत का इजहार जिस तरह करती हैं, अच्छा लगता है। सहेलियां बन गई हैं, ये यहाँ पे फैमिली बन गई है बहुत अच्छी सी। और हमारे सलीम मेमन भाई, हमारे यूसुफ भाई पापोस से, और हमारी अभी रेहाना बहना भी आ गई है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चले इसी बात पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी एक छोटी सी ब्रेक आनी है। अरे मुश्क आ गई शहजादी, अरे मुश्क क्या कहती है, कह रही अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है हैंडसम। कल वीक का पहला शो भरपूर अंदाज में किया था, जितनी भी तारीफ लिखूं कम है, बस बस इतनी तारीफें वगैरह नहीं लिखा। वजह दो हैं, नंबर एक 36 की सहूलत ना होने के बावजूद भी अपनी बातों से दिलचस्पी बरकरार रखी थी। हाय कितनी बारीकी से सुन रही हो। नंबर दो, फोन कॉल्स की भी सहूलत नहीं है, मगर उसकी कमी को भी महसूस नहीं करवाया। हैंडसम आप इसलिए सबसे मुख्तलिफ आर्जे हैं, बातों का खजाना आपके पास है, बोरियत का गुजर नहीं होता शो में। माशाल्लाह सॉन्ग सिलेक्शन ने भी दिल कदमों में रख दिया था आपके, समझ रहे हैं ना। हाय अल्लाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कहती हैं कि बाबूजी के सॉन्ग ने तो दिल की दुनिया बदल दी थी। जुल्फ मत खोलिए, मोहब्बत की चाशनी, आवाज का जादू, साथ आपकी गुनगुनाहट ने माहौल को मुअत्तर कर दिया, आपकी रूहे मन ने मिस कर दिया। मैं कह रहा हूँ रूहे मन जहन पे छाई रही थी, रूहे मन ने मिस कर दिया। वैसे सुन रही होंगी तो उनको बताता हूँ, अभी उनके मैसेज पढ़ूंगा। मेरे फेवरेट हैंडसम आरजे नदीम अख्तर, शरारत वाला लव यू, यानी के लव यू सही है। और बेटे हैंडसम चाय कॉफी क्या लेंगे, आए कॉफी हो जाए तो क्या बात है यार, जबरदस्त हो जाएगा। सबागुल सिस और चाचू थैंक्स, ये कह रही हैं मोश। अभी जाएंगे एक ब्रेक के जाने में।
2: राजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर, सियालकोट तो रोहिला काशिप ने ईवी बाइक जीती है। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनाम जीत सकते हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: वेलकम बैक सुनियो। तो लेके चलते हैं जनाब आपको एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक के जाने में, लेकिन इधर मार्क कर लूं पहले मैं। हाँ, तो ये ट्रैक हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर की जानिब से डेडिकेट करेंगे संजू को। एलो फड़ो।

0: कहेंगे सुनो, कल भी तुमसे प्यार था मुझको। क्या बात है भाई, मसूद राणा साहब और रूना लैला, लैला रूना लैला। आगे बढ़ते हैं जनाब, आपके मैसेजेस की जानेब 3636 पर भरपूर तरीके से मोहब्बतों का इजहार आपका सामने आ रहा है। और एक सॉन्ग चला देना, सलीम अमन कह रहे हैं खफा। अच्छा भाई, ये तो देखना पड़ेगा कौन सा गाना है, हिज्जे करने पड़ेंगे कैसे लिख दिया सलीम अमन भाई। अब्दुल वाजिद कह रहे हैं, वाजिद, अब्दुल वाजिद, वाजिद भाई सही बोला ना, अब मैंने वाहिद पढ़ा था एक दफा। अब्दुल वाजिद कह रहे हैं लव यू भाई। अरे भाई कमाल के आदमी हो भाई आप। है भाई, मैं कमाल का आदमी नहीं, जावेद अख्तर का आदमी हूँ, मतलब उनका बेटा हूँ। कमाल का कहाँ से हो गया, कमाल भाई हैं हमारे जानने वाले, बहुत अच्छे हैं कमाल भाई। लेकिन अब्दुल वाजिद साहब क्यों, कैसे कहा आपने बताइएगा। सुनियो एमपीए पीपीपी, अच्छा ये कोई सासी मैसेज लग रहा है। अरे अरे अरे, सियासी मैसेज नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा मैसेज है। एमपीए साहब पीपीपी के आसिफ मूसा साहब के साहबजादे मेरे दोस्त हैं हुजैफा आसिफ, B124 मार्केट बल्तिया से आपको सुन रहे हैं, कोई एक सॉन्ग उनको भी डेडिकेट कर दीजिए। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं सलीम भाई, एमपीए साहब के साहबजादे को सुनवा रहे हैं, गाने डेडिकेट नहीं किया तो बैंड बज जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बत है प्यार है। हुजैफा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहेंगे। और वो क्या कहते हैं, नाराय भटो संजीय भटो। है ना भाई, ऐसा ही है। और बिल्कुल हुजैफा साहब को हम ट्रैक जरूर डेडिकेट करेंगे। आगे चलते हैं, अब्दुल वाजिद फिर आ गए हैं। भाईजान यकीन करो, आप गाने ना सुनाओ, बस आप बात करते जाओ।
1: अरे बाजी भाई क्यों कह रहे हो ऐसा, लोग कहेंगे बस कर दो, बोल बोल कर गला खशक नहीं हुआ तुम्हारा।
0: अच्छा जी, और अनीस कह रहे हैं वेरी नाइस शो, बहुत एंजॉय किया सॉन्ग, थैंक यू। और थैंक्स सॉन्ग के लिए, ये मेरी प्यारी सी बहना जहरीन नूर कह रही हैं। अनीस साहब अगेन भाई, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बस चले जाओ टीवी ऊपर, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, ज्यादातर परिंदे वहीं जाते हैं। और हमारी प्यारी सी बेना आ गई
1: भाई, फरीदा बुरानुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, मैं आ गई।
0: जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो मेरी प्यारी सी बहन फरीदा बुरानुद्दीन। संजू कह रही हैं शुक्रन मेरी शहजादी जरीन नूर सॉन्ग का, हाँ मैसेज पढ़ने में तसल्सुल टूट जाए तो रब नहीं रहता है, आवाज और समाज के मैसेज में गुफरान से बातचीत शुरू कर दी, समझ आया, ये नहीं आया ये अंदाज, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों, असल में वो बहुत शरारती है। मैं मैसेज जब सीरियस पढ़ रहा होता हूँ ना, तो वो जानबूझ कर, यानी कि समझ रही है ना। सबा गुल के लिए बहुत सारा प्यार कह रही है संजू। और शुरू के मैसेजेस में शोर की वजह से समझ नहीं आया, लेकिन हमने तो पढ़ दिया बहुत दिल से, मोहब्बत से, प्यार से, अच्छे अंदाज से, और बहुत कुछ कहा भी। अब आपको समझ में नहीं आया तो हम दोबारा पढ़े हैं, क्या मतलब है, हैं जी जी हैं जी। और पहला गीत भाई थम्स अप हो गए हैं उस पर। और हैं कहां गए मैसेज, ओके। प्यारी नटखट सी मुश्क की शुक्रगुजार हूं, उनका पैगाम मिला कि मुश्क ने गीत की तारीफ में मेरे कहे लफ्जों को आप तक कहा था, जुल्फ मत खोलिए पाकिस्तान की पहचान फखरे पाकिस्तान जावेद अख्तर साहब के गीत के बारे में, कि उसको सुनकर मीठी सी कैफियत तारी हो जाती है, ये फैक्ट है, मेरे भी होती है, जो अगर आज भी ताजगी बरकरार रखे हुए है। शुक्रन मुश्क, उर्दू अच्छी लिखने लगी हो, ये आपकी शागिर्द बन गई है, फुल टाइम अच्छी लिखने लगी है वाकई में। और आप इस गाने की तारीफ के हवाले से मैं कुछ बाद में जिक्र करूंगा। एक मैसेज और पढ़ेंगे हम, माहिना का। डियर माहिना कह रही है अस्सलाम वालेकुम एफएम 100 की तमाम फैमिली को सलाम। माहिना कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगी, शाद रहें, आबाद रहें। अच्छा सुने हो, अब हमने गाना के जानब जाना है और गाना अभी हमने डेडिकेट किसको करना है? हाँ भाई, वो गाने डेडिकेशन तो बहुत सारे हैं, एक मिनट जरा डेडिकेशन देख लें। हमारी डेडिकेशन जो है वो एक तो हुजैफा भाई के लिए, हुजैफा के लिए मैं गाना सोच रहा हूँ कौन सा चलाऊं। अब सारे पुराने गाने हैं हुजैफा साहब, आप जो यानी के समझ रहे हैं ना, अच्छे अच्छे नए नए गाने सुनने के शौकीन होंगे, लेकिन अगर पुराने गानों के सुनने का शौक रखते हैं आप, तो आपको फिर ये सारे गाने अच्छे लग रहे होंगे। और चलें थोड़ा सा हिप हॉप टाइप का गाना चला रहे हैं हम, और ये ट्रैक हम सलीम मेमन की जानिब से और हम सबकी जानिब से साहबजादाए आसिफ मूसा साहब एमपीए पीबीपी के बेटे हुजैफा आसिफ को डेडिकेट करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको शायद कोई हुजैफा साहब याद आ जाए ये गाना सुनकर। है भाई, किसी को आपने कुछ कहा हो कुछ इस तरह।

0: FM 100's time check. It's 12 midnight.
1: वेलकम बैक. कहेंगे इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा. ब्यूटीफुल ट्रैक और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा. फरीदा बुरानुद्दीन मेरी बहना कह रही है शुक्रिया भैया. और
2: सेब खाने से विटामिन्स और मिनरल होते हैं, इसमें हमारे निहार मुंह सेब खाना चाहिए और इसके बाद दूध पीना चाहिए.
1: वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा ये टोटका है. सब नोट फरमा लें. हमारी प्यारी सी बहन ने ये कहा है. और संजू कहती हैं शुक्रान. भाई वाह, दो गाने डेडिकेट हो गए ना. दो हुए नहीं, अभी नहीं हुए भाई, अभी एक ही हुआ है. अभी अदीला और नौरीन का रह गया है, वो अभी हमने करना है डेडिकेट. नौरीन बहना कहती है अच्छा पढ़ देते हैं खी. और कहती है सेब खाने से फाइबर, विटामिन्स और एंटी ऑक्साइडनेट्स मिलते हैं. ये हाजमा बेहतर रखने, दिल की सेहत और जिस्म की मजबूती सेहत के लिए मुफीद है. रोजाना एक सेब मतवाजन गजा का अच्छा हिस्सा है. बहुत अच्छी बात है, ये तब सब बातें सबको पता है. एक चले मैं अभी, क्योंकि इसके हवाले से मैंने अभी बताना भी है, तो थोड़ा सा मैं इसको और आसान लफ्जों में ये बता दूं कि सेब खाने से हमारे जिस्म के अंदर ये विटामिन्स के अलावा जिस्म के ऑर्गन्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें क्या जो है फायदा होता है, उसमें क्या फायदा होता है. हमारे सिर्फ और सिर्फ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब ने इसका दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है. वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं और जाहिर है तजर्बा है भाई. क्या बात है यार. ओके ठीक, ये तमाम चीजें हर इंसान को तकरीबन पता होती हैं कि भाई एक सेब खाने से फ्रूट तो खैर सारे ही ऐसे हैं, बल्कि मैं आखिर में आपको बहुत से फ्रूट्स के और भी फायदे बताऊंगा जब ये सवाल का जवाब दूंगा. तो ये सवाल हंसी मजाक में चल रहा होता है तो, लेकिन इनके जवाब या ये सवाल करने का मकसद भी होता है कि जिससे हम लोगों को फायदा हो, एक आम इंसान को फायदा हो, है नहीं? हैं जी, जी हैं जी. तो विटामिन्स और हाजमा और ये तमाम मतवाजन गजा वगैरह ये सब है, बिल्कुल है. इसके साथ साथ और भी कुछ है. सबीन आ गई हैं. सबीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत हैं. और आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजों के जानेब. नदीम भाई सुना है, अच्छा ये तो हो गया था. गुफरान भाई आज कोई मस्ती करें भाई. आवाज डायरेक्ट आ रही है? आ रही आवाज? ओके ठीक है. सलीम भाई कह रहे हैं कि गुफरान भाई को बोले को मस्ती करें. वो कह रहे हैं कि गुफरान भाई को बोल, सलीम मेमन वो कह रहे हैं कि आप आ जाएं. आ जाए. वो कह रहे हैं आ जाए सलीम मेमन भाई. और नदीम भाई अकेले टी पी रहे हैं, यानी कि चाय पी रहे हैं. साहबजादा साहब कह रहे हैं, साहबजादा भाई वो कह रहे हैं वो आप भी आ जाएं. चाय नहीं, मैं अकेले के लिए नहीं पी रहा भाई, गुफरान मेरे साथ पी रहा है. बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कप फौरन दिखा दिया. अभी तो मैंने चाय की एक चुस्की भी नहीं ली. और अनीस कह रहे हैं कि सर जब भी आप भट्टो साहब का नारा लगाते हैं तो दिल खुश होता है. कोई किलोग्राम खून, एक किलोग्राम खून बढ़ जाता है. भुट्टो जिए पाकिस्तान. असल में वजह पता क्या है, देखें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के हवाले से मैं बात चले कर लेता हूं थोड़ी सी, क्योंकि वो एक पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत के जिसने पाकिस्तान को अपनी तरक्की की तरफ बहुत तेजी से गामजन किया. मगर यार हमारी बदनसीबी कि वो ज्यादा अरसा जो है وہ حکومت میں نہیں رہے اور شہید ہو گئے. تو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں. میرے شو میں کبھی بھی سیاسی ویسے گفتگو نہیں ہوتی. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو بڑی شخصیات ہیں ان کے حوالے سے تعریف بالکل ہے. اور ہر کوئی پاکستانی ہے یہ ذہن میں رکھیے, ہم سب پیورلی پہلے پاکستانی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے. ہر ایک کے حوالے سے بول رہا ہوں. اور تھینک یو لالا, تھینکس ندیم بھائی سانگ کے لیے. سبا گل کہہ رہی ہیں واہ بھائی واہ. لالا کہہ رہے ہیں جگر شروع میں درمیان میں 6-7 کالیں آ گئی ہیں اسی لیے خاموش ہوا تھا. مجھے یقین ہے لالا ایسے آپ ایکسپلین نہیں کیا کریں, میں سمجھ سکتا ہوں آپ ماشاءاللہ سے مصروف بھی رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ شو بھی سنتے رہتے ہیں. گانا کیسا لگا یہ بتائیے گا جو ڈیڈیکیٹ کیا آپ کی جانب سے. سانگ کے لیے مس احمد کہہ رہی ہیں, مس احمد سانگ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں. مجھے کیونکہ یاد نہیں پڑ رہا کہ میں نے آپ کو کوئی گانا ڈیڈیکیٹ کیا ہو یا آپ کی جانب سے گانا ڈیڈیکیٹ کیا ہو, لیکن پھر بھی آپ کو سانگز اچھے لگ رہے ہوں گے تو بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. جیتی رہے مسکراتی رہے میری بہن. اور وہ پوچھنا یہ تھا کہ یہ چٹکلا ہے یہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے بھائی, ابھی ہم آپ کو لے کر جائیں گے ایک اور ڈیڈیکیشن کی جانب. اور یہ ڈیڈیکیشن جناب ہم کریں گے. اچھا ریحانہ میری بہنا, آپ نے ایک ڈیڈیکیشن کے لیے کہا تھا تو آپ کی ڈیڈیکیشن گانا ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں پاگل ہو گیا, نہیں مل رہا فی الحال وہ گانا. لیکن اس طرح تو ہوتا ہے نا اس طرح کے کاموں میں. تو جناب ابھی ہم جس ٹریک کی جانب جا رہے ہیں یہ گانا ہم اپنے جتنے بھی بزرگ لسنرز ہیں, بزرگ سے مراد یہ ہے کہ جو 50-60 پلس ہیں, جسٹ لائک ہمارے علیم الدین یوسف زئی صاحب ہیں, خطاب لالا ہیں, ہمارے شہاب انکل ہیں, ہماری پیاری آنٹی ہیں, ہماری اماں ہیں مسز محمد علی, اور ہماری عائشہ جی ہیں, ہماری پیاری سی چاچی ہیں. لیکن چاچی تو ینگ لگتی ہیں یار ہمیں. چاچی جیتی رہیں مسکراتی رہیں شاد رہیں آباد رہیں. اور جتنے بھی ہمارے جو اولڈ ایجرز ہیں ان سب کو یہ ٹریک میں اپنی جانب سے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. ہیلو پھڑو

वेलकम बैक। गए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। ब्यूटीफुल ट्रैक और उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा। अब सुने बात दरअसल ये है कि आप लोगों की फरमाइशें बहुत ज्यादा हैं और जाहिर है वो भी पूरी करनी है नालो नाल। लाला कहते हैं कि जिगर वाह क्या सॉन्ग लगाया है, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। ये दिल खुश हो जाता है लाला जब आप लोगों के लिए गाना चलाया जाता है ना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जाती बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने फरमाइश की, डेडिकेशन की, अपनी पसंद का गाना चलवाया और मैंने चला दिया। तो जब वो अच्छा ज्यादातर डेडिकेशन जो होती हैं मैं अपनी तरफ से गाना चला रहा हूँ, क्यू शीट में होते हैं, तो जब आप लोगों की तरफ से उसका फीडबैक आता है तो खुशी होती है मुझे। हाय जैसे लाला को पसंद आया गाना, हाय ये सुनना चाह रहा था, मैं खुश होना चाह रहा था। खैर जी इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। संजू ने एक मैसेज किया है, हमारी बहुत ही प्यारी सी लिसनर तानिया जी को बहुत सा प्यार कह दीजिए। तानिया हसन तो है ही प्यारी और जनाब मतलब उनका सिलसिलाकार कुछ ऐसा होता है, एवरीबडी नोज कि माशाल्लाह से वो ट्रैवलिंग ज्यादा कर रही होती हैं, तो जब भी सुनती हैं और जब भी उनका मैसेज आता है हम उनको जो है सॉन्ग भी डेडिकेट करते हैं, कोई भी सॉन्ग तानिया जी के लिए मेरी तरफ से। तो संजू आप फरमाइश बहुत कम करती हैं, डेडिकेशन आपकी जानिब से भी वो भी कम आती है, तो जब आप कहेंगी तो जरूर होगी, यानी कि समझ रही है ना आप। तो संजू की जानिब से हमने तानिया जी को ट्रैक डेडिकेट करना है, तो आप लोग सुनते रहें। अच्छा जनाब अब जो है हम संजू की ही जानिब चलते हैं, तो इनको एक ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं और ये ट्रैक जो है अब दो जो हैं प्यारी सी बहनें मेरी, एक तो है अदीला और एक है मेरी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ, इन दोनों की जानिब से संजू को ये वाला ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं, एलो फड़ो।

वेलकम बैक दिनवा दिनवा मैं गिनू ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको पसंद आया होएगा और सुने हो मैसेंजर पर जितने भी मेरे लिसनर सुन रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि मैं आ चुका हूँ लाइव फेसबुक पर, तो लिहाजा आप वहां पर मैसेज करेंगे तो मेरे पास नहीं आएगा, तो लिहाजा यहाँ आ जाए फौरन। नौरीन तौसीफ आ जाओ, अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, संजू मुश और जाहिर है मेरे फेसबुक पर जितने भी दोस्त हैं, दोस्त अहबाब हैं, जब उनके पास नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। खैर जी, सवाल आज मैंने फ्लूट किया है कि सेब खाने से क्या फायदा होता है, जिस्मानी तौर पर क्या फायदा होता है, और संजू आ गई हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं। अच्छा जनाब, लाइव फेसबुक पर आने की एक वजह और भी है, हमारा एक बहुत ही प्यारा सा शहजादा दोस्त है मेरा, जिसका नाम है बिलाल राजपूत। बिलाल राजपूत की आज बर्थडे है, बर्थडे 19 हो गई है, 12 बजे के बाद 19 को वो इस दुनिया में उतरे थे और उत्तर के जो जो कमालात उन्होंने दिखाए हैं माशाल्लाह। बिलाल भाई, आपको हम बर्थडे विश करते हैं कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो हजारों साल, और अल्लाह ताला आपके दामन जो है वो खुशियों से भर दे, आपको तमाम आपकी वो जो जायज ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला वो सब पूरी करे, मुश्किलात खत्म फरमाए, और यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो ये मैं आया इस वजह से हूं कि बिलाल जरूर देखेगा, बिलाल राजपूत। तो बिलाल भाई और तमाम दोस्तों की जानिब से, हमारे तमाम और आपके भी तमाम दोस्तों की जानिब से आपको हैप्पी बर्थडे। नौरीन आ गई है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, मुश्क भी आ गई है और कह रही है हेलो हैंडसम, एंड हियर्स कम अयूब अफरीदी लाला। लाला कैसे हो? अच्छा भाई, जरीन नूर मेरी प्यारी सी शहजादी बहना कह रही है कि एप्पल के बहुत, यानी कि सेब के बहुत फायदे हैं, इसमें आयरन है, वाह वाह वाह वाह वाह, इसमें वाइटामिन है, वाह वाह वाह वाह वाह, सी वाइटामिन सी भी है थोड़ा सा, थोड़ी मिकदार में वाइटामिन बी जी भी है, बी सिक्स और पता नहीं कौन कौन से, B9, B6 और पता नहीं सारे वाइटामिन मेरी बहन ने इसी में भर दी है भाई, वाह वाह जबरदस्त। और ये बिल्कुल आपने फाइबर भी है, तो जरीन नूर ये हंसी मजाक अपनी जगह पर, आपने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है। नौरीन तौसीफ कह रही है शुक्रिया नदीम भाई, दिनवा मैं गिनू, ये नौरीन की जानिब से। संजू कैसा लगा रूना लैला? नदीम भाई कौमी तराना लगा दीजिए, पहले आप खड़े हो जाए। हाँ जी, और साहबजादा साहब कह रहे हैं

वेलकम बैक। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। लाला क्या कह रहे हैं? लाला कह रहे हैं संजू सिस्टर आज भी आप गैर होती तो आपका भाई, गैर हाजिर होती तो आपका भाई आपके हक में दुआ करता कि आप फौरन आ जाए। और हाकिम जरदारी साहब भी आ गए हैं, हाकिम अली जरदारी, और थैंक यू वेरी मच। हमारी प्यारी सी शहजादी अजरा शबीर जी, हमारी प्यारी सी चाची की दोस्त, कह रही योर शो इज एज यूजुअल वेरी गुड। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मैसेज इनका वहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई। रिक्वेस्ट योर टू योर ऑल सिस्टर्स लिसनर्स टू प्रे फॉर यास्मीन, शी वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, नाउ शी इज एट होम ऑन बेड रेस्ट, अल्लाह सलामत रखे। अरे रखे, बी एनर्जेटिक ऑलवेज, आई गिव यू लव यू। हाँ शाजरा जी, आपने बहुत अच्छा किया ये जो मुझे बताया है आपने, थैंक यू वेरी मच। अजरा शबीर जी हमारी चाची की बहुत प्यारी सी दोस्त हैं ये, और हमारी चाची की तबीयत सही नहीं है, उन्होंने बताया हॉस्पिटलाइज रही हैं, और चाची अभी जो हैं वो बेड रेस्ट पर हैं, और अल्लाह ताला चाची को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप सबसे मोदबाना मेरी दिली मतलब ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जो है चाची के हक में दुआ कीजिए कि हमारी प्यारी सी चाची को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। मिनाहिल ने याद किया था, मिनाहिल खुश रहें, और चाची को मैं इंशाल्लाह ताला कॉल जरूर करूंगा, आई विल कॉल हर। आप क्यों ठीक हूं? मेरा एक बेटा है एक बेटी 6 मंथ की, माशाल्लाह अभी सब सुन में शो सुन रहे हैं, सब सियोन में सहन मेरा ख्याल होगा, सब शो सुन रहे हैं भाई। कमर के जो साहबजादी हैं, वो छोटी सी मुन्नी जो है 6 महीने की, इनको तो क्या समझ में आता का बेटा होगा शरारती, वो देख रहा होगा। हाँ भाई उसका नाम क्या है जरा बताइएगा अच्छे से। लाला मुझे यकीन है आप दुआ करते हैं, और चाची के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह पाक सलामत रखें, आमीन सुम आमीन। आप सब भी चाची के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, और वक्त तेजी से गुजर रहा है, फौरन से पेशतर एक ट्रैक की जानिब जाएंगे, और ये ट्रैक जनाब हम हमारी प्यारी सी बहना रेहाना जो है पाकिस्तान बाजार से, उन्होंने बहुत ही जो है टॉन्टिंग वाला मैसेज किया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा गाना नहीं चलाया, अच्छा वो नहीं मिला तो ये चला दे उसमें प्यार भी आ गया मैसेज में। तो मेरी प्यारी सी बहन आपकी फरमाइश सर आंखों पर, ये मेरी प्यारी सी बहन रेहाना पाकिस्तान बाजार वाली, उसकी फरमाइश है, पाकिस्तानी मूवी का गाना है, पुराना गाना है, पंजाबी गाना है, होपफुली आपको पसंद आएगा। एलो फड़ो।

वेलकम बैक। वाह भाई दिल दिता तेरे नाम। और रेहाना आपके लिए गाना चलाया और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यासिन खान दिल पर जाना जी सलाम नदीम भाई जाना संग यार खई जी तासु संग खई जी ठीक ठाक जी। यासिन खान लगता है तुम्हारा बीवी बहुत दूर गया हुआ है, तुम फौरन आ जाता है आजकल, भाभी ने जो है ना छुली छूट दी हुई है तुम्हें, कोई कहानी चल रही है भाई। अच्छा जी मैं आपको अंकल बुलाऊं के भाई हाँ हाँ हाँ हाँ यासिन खान ये बिल्कुल ठीक बोलते वहां से इशारा करते। अच्छा ये गुफरान भाई मेरे दिमाग में आया था मगर मैं अलाइव हूँ। अच्छा भाई अच्छा वो अब्दुल्ला तुम मुझे भाई बुला करो, मजा आएगा कसम से। तुम मतलब लगता तो भाई हूँ ना, सच सच बताना भाई, झूठ नहीं बोलना हाँ भाई। तो ये अब्दुल्ला जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं आरिफ, और मेरे साथ पड़ोस में काफी अरसा हम लोगों ने कई साल साथ गुजारे और दोस्ती इतनी मजबूत और इतनी प्यारी हो गई कि वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम है। और आरिफ के माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो हमारे सामने बड़े हुए हैं। ये जो अभी अब्दुल्ला आरिफ का जो मैसेज आप देख रहे हैं तो ये हमारे सामने बच्चा जो है माशाल्लाह से बड़ा हुआ है और सीए कर रहा है। और सैल्यूट है आरिफ भाई को कि उन्होंने और भाभी ने अपने बच्चों की तरबियत बहुत खूबसूरत की है। तमाम बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तालीम के लिए बाप ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी और बच्चों ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जो अपने औलाद के लिए बेपना मेहनत, हर वालिदा जो है अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचती है और उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है, मगर बहुत ज्यादा मतलब औलाद को पैम्पर्ड किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, दुनिया की तमाम आशाइशें उनको अता की जाए तो बच्चा बिगड़ भी जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो आरिफ भाई हमारे अल्लाह ताला ने उनको साउंड है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने हर चीज से अता किया हुआ है अल्लाह ताला ने उनको, लेकिन और उन्होंने अपने बच्चों को भी बड़ा फैसिलिटेट किया है। देखिए मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूं कि ये सीख की बात है। तो उन्होंने अपने बच्चों को भी फैसिलिटेट किया है, हर आसाइश अता की है उनको, जो कि मैं ये समझता हूं कि एक आम इंसान जो है अपने बच्चों को वो चीज प्रोवाइड नहीं कर सकता जो वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो उसने अपने बच्चों को तरबियत ऐसी की है कि वो बड़े जिसको कहते हैं कि अच्छे सुगड़ बच्चे, जिसको कहते हैं कि इन तमाम फैसिलिटीज बिगाड़ नहीं है उनमें, बिगड़े हुए बच्चे नहीं है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब्दुल्ला मेरा बच्चा जीते रहो मुस्कुराते रहो, नदीम भाई का करो ठीक है। और एम इस्लाम आफरीदी साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, और अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं अब इंतहाई आप इंतहाई संजीदा शख्सियत लगते हैं ये अच्छी बात है अलीमुद्दीन साहब, वैसे ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलते रहते हैं ये आ गए जरा इस पर। अच्छा जी फरीदा बुरानुद्दीन कह रही है आप गैस वाला देखते हैं बच्चे आपसे डर कर भाग जाते हैं। अरे इधर ही रहो तुम्हारी राय देखना। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि शुक्रिया नदीम भाई फॉर प्रेजेंस, अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को खुश रखे, आमीन। बेटा आपको भी अल्लाह ताला खुश रखे और हमेशा सलामत रखे, बस तरक्की करते रहो, हमारी दुआएं तुम लोगों के साथ है। वाह वाह आप जो खा रहे हैं ये खाइएगा और एम इस्लाम आफरीदी ये खा रहे हैं गुफरान भाई अकेले ठीक है ना यार, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है यार, खुशबू आई है बाकायदा यहाँ पर इसकी, ये आपको इसका टेस्ट भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आई है ना। हाँ दिल किया है मगर आप केला खा चुके हैं अच्छा जी सबीन कह रही है आप चेहरे से संजीदा नहीं लगते, चेहरे से भी मस्खरापन छलकता है, बुरा नहीं मनाइएगा, नहीं बुरा बिल्कुल नहीं मनाइए, मजाक है, मजाक नहीं, आप हकीकत में भी कह रही होती तो हर इंसान को
की अपनी अपनी राय होती है और आप अपनी राय का इजहार कर रही हैं, सो व्हाट, बुरा मनाने वाली क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, अच्छा जी, आप गुस्से वाले हरगिज नहीं लगते, अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं। और सद्दाम हुसैन अलाहाबाद, अल्लादाद, सुभान हसन अल्लादाद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, जब जनाब क्या हाल है, कैसी तबीयत है, आज आपको 5 साल बाद सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। सद्दाम साहब, आपका नाम मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था और अब याद आ गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने अरसे के बाद आपने सुना भी और देख भी लिया। जनाब, तो अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब का जो पसंदीदा गाना है वो हम अब आपको सुना देते हैं, ठीक है ना, फौरन से पेशतर, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। उसके बाद हमारी फरीदा बुरानुद्दीन बहना को भी ट्रैक डेडिकेट करना है, एल्लो फड़ो, ये अलीमुद्दीन साहब आपके लिए है।

है अरमान मेरा दिल रोता है। यार गाना तो क्या कमाल गाना, जबरदस्त सलीमुद्दीन साहब आपके लिए गाना चला दिया हमने। अच्छा आपके घर वालों से पूछना पड़ेगा कि आप कैसी तबीयत के हैं, क्यों नदीम भाई? नहीं आप भी तो अंदाजा लगाए ना, आप लोग इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा भाई 12:45 हो गए हैं तो अब आप लोगों से कुछ पूछना भी है। मैसेजेस तो आपके चल ही रहे। कमर भाई कह रहे हैं आपने ठीक कहा है केले के बारे में, आप समझ रहे ना, कमर भाई भी तस्दीक कर रहे हैं इसकी। अच्छा जी मेरी तरफ से हमारी प्यारी सी चाची के लिए ढेरों दुआएं हैं। संजू ने भी दुआओं का कहा है, नौरीन तौसीफ ने भी बहुत सारी ढेरों दुआओं का कहा है चाची के लिए। अल्लाह ताला चाची को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और सीमा साहब मेरी प्यारी सी बहन आ गई है, कह रही नदीम भाई एक अच्छा सा सॉन्ग समी इमरान सलीम, इमरान भाई सलीम भाई संजू चाची हुम्मा अरूसा नौरीन तौसीफ अयुब लाला इन सबको डेडिकेट कर दे। बिल्कुल कर देंगे, अभी तो फरीदा बुरहानुद्दीन का गाना चलाना है हमने। अच्छा जी उमेर मुस्तफा कह रहे हैं सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम ए आर, ये तो ए आर कौन है? ये ए आर जो है वो जीबीएन की जानिब से मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं वो तो नहीं देख रही। और सदाम भाई कह रहे हैं आप, अच्छा तारीफें हो रही हैं सदाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और अख्तर अली खान खटक साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। अख्तर भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? और अरूसा आपी को की तबीयत कैसी है, कैसी हैं? अरूसा आपी बहुत अरसे से जो है वो गैर हाजिर हैं, शो नहीं सुन रही हैं। और चाची का तो खैर हमें पता ही है। नदीम भाई तमाम सुनने और देखने वाले को आमना रहमान, अरे आमना याद आ गया ए आर। आमना कैसी हो, ठीक ठाक हो? वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम पहुंच गया। तो अब हम जो है ना जिस गाने की जानिब जा रहे हैं फौरन से बेशतर, अरे नहीं सवाल का जवाब भी तो दे दूं आपको। देखिए भाई मैंने आपसे ये पूछा कि सेब जो है, नहीं यार ये थोड़ी देर बाद देंगे इसका, मतलब एक गाना चला देते हैं उसके बाद इसका जवाब देंगे। जनाब एक बहुत जबरदस्त सा ट्रैक है, अरे यार ये ट्रैक नहीं, ये भी ट्रैक नहीं, ये वाला ट्रैक सही है। तो ये ट्रैक जनाब हम डेडिकेट कर रहे हैं फरीदा बुरहानुद्दीन की जानिब से आप सबको। एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सोने हो। अच्छा जनाब, अब जो है कासिम सैफ साहब कह रहे हैं, नदीम भाई आपने मेरा सॉन्ग नहीं प्ले किया, मैं आपको मैसेंजर पर सेंड करा है, प्लीज सॉन्ग प्ले कर दीजिए। कासिम सैफ, वाह वाह, देखा हुआ है। तो कासिम साहब, आपने कौन सा गाना जो है वो बोला था, मुझे तो नहीं पता। और अब्दुल्ला सैयद अब्दुल्ला, मैं आयशा अब्दुल्ला हूँ। अरे आयशा कैसी हो, मैं आपकी बहुत पुरानी लिसनर हूँ। आयशा थैंक यू वेरी मच, काफी अरसे के बाद आई हैं, शादी वादी हो गई होगी, ठीक है ना, दो चार मॉडल आ गए होंगे, उसके बाद आप दोबारा आई होंगी, इसी तरह होता है। खैर जी, मैंने सवाल आपसे पूछा था सेब के हवाले से, और मैं बता दूं, पहले बता देता हूँ, हमारे गुफरान भाई आए हुए ना, तो आपको पता ही है, तो गुफरान भाई तो गुफरान भाई है। एनीवे, अभी वक्त बहुत महदूद सा रह गया गुफरान भाई, तो चाहूंगा आपसे कि थोड़ी सी तवज्जो, यानी कि समझ रहे ना। तो सवाल मैंने आज से ये किया था कि जनाब नौरीन तौसीफ के नहीं है, अल्लाह ने कहान असलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज, कोई जरूरत नहीं है जाने की, अभी जब मैं अल्लाह हाफिज कहूंगा तब आप सबने जाना है, ठीक है। तो सवाल ये था जनाब कि सेब के इंसानी जिस्म पर क्या फायदे होते हैं, तो सेब खाने से बहुत सारे फवायद के हवाले से आप लोगों के जवाब आए। आप लोगों ने बोला जी कि सेब खाने से वाइटामिन B6 B9, मेरी प्यारी सी बहन जरीन नूर ने बताया, और भी उसके अलावा नौरीन तौसीफ ने बताया, तमाम तकरीबन लिसनर्स ने बताया कि सेब खाने के बहुत सारे फवायद हैं, आयरन होता है इसमें, फाइबर होता है इसमें, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला। जो सबसे बड़ा फायदा है वो हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब ने बताया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि जवाब आया इसका, और वो ये है कि सेब खाने से ये तमाम फायदे, तो वाइटामिन्स के फायदे तो हैं ही, लेकिन उसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि खून जो है, इंसानी जो खून गर्दिश कर रहा है, इसको ये जमने नहीं देता, मतलब उसको थिक नहीं होने देता, उसको पतला रखता है, जिससे दिल जो है वो मजबूत रहता है, रंगत जो है चेहरे पर ताजगी आती है, फ्रेशनेस जिसको कहते हैं, ग्लो जिसको कहते हैं करना, ये नजर आने वाली चीजें और कुछ नजर ना आने वाली चीजें भी है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बताया ही है, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आपको फ्रूट्स के हवाले से कुछ और भी इंफॉर्मेशन दूं, नहीं दूं फ्रूट के हवाले से इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता, और उसकी वजह यह सेब के हवाले से मैंने आपको बता दिया है, बट ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि वक्त बड़ा महदूद सा रह गया है। जरीन नूर मेरी बहना ने मैसेज किया है और चाची के लिए ढेरों दुआएं की हैं, और आप सबके पैगाम, आप सबकी दुआएं मैं चाची तक जरूर पहुंचाऊंगा, उनसे मैं बात जरूर करूंगा। मुझे पता चला है चाची ने हमें बहुत प्यार किया हुआ है, मुझे भी, अयास को भी, और मैं ये समझता हूं कि हम जब से FM कर रहे हैं, वाहिद हमारी एक प्यारी सी चाची ऐसी लिसनर है कि जिन्होंने यहां पर आकर बेतहाशा बहुत मर्तबा जो है वो हमसे उन्होंने मुलाकात की और प्यार दिया, मोहब्बत दी। आप सब भी प्यार मोहब्बत सब देते हैं, मगर वो यहां पर आकर हमसे बहुत मिला करती थी, खुसूसी तौर पर पहले अयास के साथ, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे भी उतनी ही मोहब्बत, उतना ही प्यार दिया। तो चाची का दिल से एक गहरा रिश्ता है, और चाची को मैं कॉल जरूर करूंगा और आप सबका जो है पैगामात उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। अच्छा जनाब, इसके साथ ही मैंने अब आप लोगों से चाहनी है इजाजत, और इजाजत से पहले मैं जरा गाना देखूं कि कौन सा गाना आप लोगों को सुनाऊं। हां जी, एक तो ये गाना मैं अपनी जानिब से डेडिकेट करूंगा, और जी ये दो गाने जो हैं, वो दूसरा गाना मैं एहतियातन जो है वो चलाऊंगा, तो शो तो वैसे खत्म हो ही जाएगा, ठीक है जनाब। तो इसके साथ ही चाहेंगे जनाब आपसे इजाजत, इंशाल्लाह ताला मुलाकात आपसे होगी कल स्लीपलेस नाइट में, रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपके साथ होंगे। प्लीज माई सॉन्ग कासिम सैफ, आपका सॉन्ग जो है वो कल चलेगा, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल स्लीपलेस नाइट में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

एक और खूबसूरत सा कलाम चंद अशआर शामिल करूंगा मैं, और वो है कि हमें इश्क में बीमार रहने दो, हमें इश्क में बीमार रहने दो, हम दर्दी ना करो यार रहने दो, हमें इश्क में बीमार रहने दो, हम दर्दी ना करो यार रहने दो, आप कीमती किताब ही सही, आप कीमती किताब ही सही, हमें दो कौड़ी का अखबार रहने दो, हमें दो कौड़ी का अखबार रहने दो, आपके रहबर बहुत आला, आपके रहबर बहुत आला, हमें उनका पैरोकार ही रहने दो, हमें उनका पैरोकार ही रहने दो। और अब शामिल करते हैं एक खूबसूरत सी

के पास से जनाज उठेगा, वो शायद मामी उसे घर से निकाल देंगी, फिर वो कहां जाएगी? पल भर में ये क्या हो गया? मामी परदेश से अपने भाई के गले लगकर रो रही थी और वो घुटनों में सर दिए आने वाले वक्त की तारीकी को महसूस कर रही थी। किसी ने उसे एक तरफ किया। कल मैं शहादत की सदाएं बुलंद हुई। मामी का बहन सस्कियों में बदल गया। वो जनाजे के साथ बाहर जाना चाहती थी मगर कदम लटखड़ा गए। एन उसी लम्हे किसी ने उसे सहारा दिया। उसने सर उठाकर देखा तो वो मामी के अधेड़ उम्र भाई थे मगर नजरें अजीब हैरत से उसके चेहरे पर जमी हुई थी। उसकी सब्ज आंखों में एक अनजानी सी पहचान थी, वो छिटक सी गई। आज उसकी सब्ज आंखों ने पहली बार एक और जंगल जैसी सब्ज आंखें देख रही थी। जैसे एक ही होशे से टूटे हुए दो अंगूर के दाने बरसों बाद आमने सामने आ गए हों। वो आंखें उसे पहचानती थी और शायद वो भी उन आंखों को पहचानने लगी। सब हलाली आंखें, ये इस अफसाने का उन्मान था। कैसा लगा आपको यह अफसाना, जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश है कि मैं अपने ख्वाब दर्जी के प्रोग्राम में हमेशा जो रेगुलर जो जिंदगी रही आगे, तो इस तरह एक कोई ना कोई अफसाना जरूर शामिल करूंगा। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। कोशिश तो ये है कि आपको पसंद आना चाहिए। बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। आप जिस तरह चाहेंगे होगा वही, और आप पसंद करेंगे तो जरूर शामिल करूंगा।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम या खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.

इंसान को हैरानी में